0: देखो पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो, और तराजू सीधी रखकर तोला करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और मुल्क में फसाद न करते फिरो, और उससे डरो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया। वो कहने लगे कि तुम तो जादू जदा हो और तुम और कुछ नहीं हम ही जैसे आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो, सो अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, पस साइबान वाले दिन के अजाब ने उनको आ पकड़ा, बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था, इसमें यकीनन निशानी है, और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है मेहरबान है।
1: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.

गुर्दे की पथरी मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301 2196 851।

हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में हिकु भेरो ॿीहर इज़ाफ़ो करे छॾियो। पेट्रोल 13.18 रुपया ऐं हाई स्पीड डीज़ल 13.80 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 310.71 रुपया ऐं हाई स्पीड डीज़ल जी नई क़ीमत 323.30 रुपया फी लीटर मुक़रर। नोटिफिकेशन जारी।

वजीर आजम शहबाज शरीफ जो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिजिकशान से फोन से राबतो। खिते में हाणोकी शिकत आणते गणती जो इजहार। वजीर आजम धुरन मथा जोर भरीदे अड़ो को भी कदम खण का पासो कयो वे जैसा गुजरल महीनन दौरान अमुन लाय हासिल थींदड़ कामयाबियों के नुकसान पहुंचे। इस्लामाबाद यादाश नामे खिते तोड़ी उन बार गडियल एतराम ए गडियल खुशहाली के हथी दियण लाय एक पायदार बुनियाद फराहम करे थी। पाकिस्तान इलाकई अमुन इस्तेहकाम के बहाली ए बरकरार रखने में मुखलिसानो ए ईमानदारों किरदार अदा करने लाय हर मुमकिन सहकार जारी रहंदो। ईरानी सदर मसूद पिजिकशान शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जे जनाजे नमाज में पाकिस्तानी क्यादत की शिरकत ते थोराए तो। ईरान बीहर गाल शुरू करण की दरख्वास्त कई है। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप की दावा। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में अमरीकी सदर कहो है त ईरान के आगाह कर छो है त जंग बदी खत्म थी चुकी है। ईरान मुख्य कत्ल करण में कामयाब थी वे तो उन जा संगीन नतीजा भोगी। ईरान से टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन मसल के सफारत हल लाय पुरजम आयो। अमरीकी अमलदार की दावा। अमरीकी मीडिया मूजिब तहरान ए वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन। पाकिस्तान समेत सालिस मुल्क में शिकत आने के खात्मे लाय कोशिशों तेज कर छदियो। सालिस मुल्क एटमी प्रोग्राम से गाल बहाली लाय कोशिशों कर रहा है। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप ईरान से मुकम्मल जंग के हामी ना है।

0: बलोचिस्तान में पाक फौज एफसीए पुलिस जो दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन शोबान जारी 24 कलाकन दौरान 17 दहशतगर्द मारजी विया 5 दिन दौरान मारजी वेलन जो अंग 79 थी वयो सिक्योरिटी जरियन मूजिब 5 जुलाई का शुरू कल ऑपरेशन शोबान ए बिन कार्रवाई में मजमुई तौर से 19 दहशतगर्द मारिया विया दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई जारी सदर ए वजीर आजम पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज के भेटा पेश सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी दुश्मन का बर्दाश्त न पई थे पाकिस्तान खिलाफ प्रॉक्सीज के इस्तेमाल कदड़ कदें भी कामयाब ना वजीर आजम शहबाज शरीफ कें बलोचिस्तान जो अमन खराब करण की इजाजत न डनी वेंदी मुल्क में दहशतगर्दी के पारा पटे छदासी पूरी कौम बहादुर फोर्स से गड बीठल है
1: सबसे पहले जूनियर साइंस टीचर के लिए खुशखबरी ये है कि हम जूनियर साइंस टीचर जितने हमारे बच्चे पास हुए हैं इंशाल्लाह सबको अपॉइंट करें जितने बच्चे हैं 8700 बच्चे इंशाल्लाह उन सबको जल्दी ऑफर ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे उन सबको अपॉइंट किया जाएगा लेकिन क्राइटेरिया वही रहे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जितनी बच्चियाँ पास हुई हैं 500 के करीब जो हमारी बच्चियां अभी पास हुई हैं इनको विद इन 15 डेज ऑफर ऑर्डर्स दिए जाएं विद इन 15 डेज और तीसरा जो इशू था जो मेन इशू था जेएसटी जेईएसटी और पीएसटी वाला जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी उस पर बहुत डिस्कशन हुई उस पर एक कोर्ट का केस आ गया है जिसमें जिसकी वजह से कमेटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट से कि लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठे हैं जो कानून बनाते हैं उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने
2: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना तो कमेटी
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: ஐரன் ஐரன் ஸ்டோர் ஹாலானி ஹோல்சேல் டிப்போ a name to be trusted
1: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல் பட்டி லோஹி தரவாஜா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ஐ ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரிய دستیاب ஐ
0: ஹானி யச்சு மெஹரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ்த் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
1: ராப்தி லை ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601 00
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
4: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ दौर स्विट्ज़रलैंड में थियण जो इम्कान। अमरीकी मीडिया मौजे पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर ऐं मिस्री अख़्तियारनि अमरीकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राब्ता करे छिकताण ख़तम करण ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे, जंहिं बाद ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते हमला बि बंदि कया आहिनि।
1: ईरान मूंखे क़त्ल कयो या क़त्ल करण जी साज़िश कई त 1000 मिज़ाइल ईरान ते फायर करण लाइ तयार आहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ज़रूरत पवण ते अमेरिकी फ़ौज खे ईरान खे मुकमिल तौर तबाह करण जूं हिदायतूं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। ईरान खे साज़िश रोकणी पवंदी।
0: ईरान ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त बाबति अमरीकी सदर जी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक्ची चयो आहे त ईरान मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कयो आहे। अमरीकी नाणे वारी वज़ारत शिक नंबर 9 जी भञकड़ी कई आहे। अमरीका सां मुआहिदो गॾियल बुनियादनि ते ई थी सघे थो।
1: छहनि महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडूं जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आमो साम्हूं नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवान, इरफान अली कीरियो, मोहम्मद हारून खोसो, मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर हुसैन शर में मुक़ाबिलो पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे। सिटी कोर्ट में 2 डिजिटल पोलिंग स्टेशन ऐं 90 डिजिटल बूथ क़ाइम कया विया। 90,000 खां वधीक रजिस्टर्ड वोटर्स बायोमेट्रिक में घटिजी 5,500 थी विया आहिनि।
0: ऐं टंडो ग़ुलाम हैदर में फुलेली कैनाल मां निकिरंदड़ शाहवाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। हैदराबाद बदीन रोड ते धरणे सबबि गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि जो चवणु आहे त पाणी न हुअण सबबि पोखियल बेजारो सड़ी वियो आहे, पूछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
7: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमामु जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज़ जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज़ जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 03201800003।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

0: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: कने गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सही कहती हैं अम्मी, मैं मनोज उनकी जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वैक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: मेरी जिंदगी थी वो, मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हर

0: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अगते वधी वडा फेस हुकूमत जारी कया सिंध बिल्डिंग
3: बलोचिस्तान में फोर्सेस जो ऑपरेशन शाबान जारी वधिक नव खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन दौरान मारजी वयल खारजी दहशतगर्दन जो अंग वधियो। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब पाक फौज

0: वज़ीर मोहसिन नकवी पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो त मुल्क में लिकल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो।
1: छिकताण में वाद वाद अमेरिका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकरर करे छड़िया। यूएसएस इब्राहिम में यूएसएस चार डब्ल्यूएच बुश के ईरान वेझो मुकरर कयो वयो। सेनेट काम मौजूब अमेरिका जा वीह खां बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहा है। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरानी फौज जे दुश्मन जी चुरपुर ते नज़र आहे। फौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजे फौज ते फ़ख़्रु आहे।
0: ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ दौर स्विट्ज़रलैंड में थियण जो इम्कान। अमरीकी मीडिया मूजिबि पाकिस्तान सऊदी अरब कतर ऐं मिस्री अख़्तियारनि अमरीकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राबता करे छिकताण ख़तम करण ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे, जंहिं बाद ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते हमला बि बंदि कया आहिनि।
1: मूंखे क़त्ल कयो वञे त ईरान खे धरतीअ तां विसारे छॾिजो, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फौज खे हुकुम। न्यूयॉर्क टाइम्स खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सालनि खां मूंखे निशानो बणाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरान जेकॾहिं मूंखे क़त्ल कयो या साज़िश कई त फौज खे सख़्त जवाब ॾियण जो हुकुम ॾेई चुको आहियां। अमेरिकी फौज ईरान ते 1000 मिज़ाइल फायर करण लाइ तयारु आहे। तहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो।
0: का बि जंग ईरान जे हथियार फिटा करण सां ख़तम न थींदी, पोइ ते न हटंदासीं। अमरीका मुआहिदो टोड़ियो त ज़िमेवार पाण हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त जंग लाइ हर वक़्तु तयार रहंदड़ मुल्क ई अमरीका सां मुयसर ॻाल्हियूं करे सघे थो। परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखची जो चवण हो त अमरीका खे ॻाल्हियूं जारी रखण जी दरख़्वास्त नाहे कई। ईरान मफ़ाहमती याददाश्त नामे ते अमल कयो आहे। अमरीका सां मुआहिदो गॾियल बुनियादनि ते ई थी सघे थो।
1: सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राबतो। ॿिन तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाणनि अमेरिका ऐं ईरान विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो बि जाइज़ो वरितो। ॿिन्ही अॻवाणनि बहिरी रस्तनि जी हिफ़ाज़त ऐं आज़ाद चुरपुर ऐं खिते जी सिक्योरिटीअ खे हथी ॾियण वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरियो।
0: पिरियालो वेझो कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़त्ल, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठ गहणो कलोड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरनि में झेड़ो थी पियो। गोलियूं लॻण जे नतीजे में रहीम बख़्श कलोड़ो क़त्ल थी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। हिकु ॼणे जी क़त्ल बाद धुरनि में तकरार तेज़ थी वियो। इलाइक़े में ॾाकाओ।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-18-00-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
4: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 1800003

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: छो परेशान आई
3: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेट हलंदी।
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए अब दिल तमाम खूबसूरत मासूम सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर चाहतों की बारिश और आसवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागते समय से आसमान तक, जिंदगी से मौत सांस से दर्द से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़का के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुके हैं जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों से सुननी है, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों को बताना है। तो रेडी शेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ साथ मजे करने के लिए और साथ ही साथ खूबसूरती के राजों को जानने के लिए। और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर रीजन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डी जे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब, और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जरा आप अपनी हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत उन कैसे है आपकी हालत उन उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सबकुल मूड के साथ, सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं। तो बिल्कुल जी, 2 घंटों में आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नात के साथ, तो बहुत प्यारी सी नात और कलाम सुन लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का।

फाइन लॻे थो तव्हां वफ़ादार माण्हुनि सां टकरिया कोन आहियो. उन खां अलावा शबीर मलिक हमारे साथ हैं जी, खुशामदीद करती हैं आपको भी. और मोहम्मद ज़मान कहते हैं स्वीट बुआ जी, आई सिलेक्टेड आइसक्रीम चैलेंज चैलेंज आइसक्रीम. एमन सारी कहते हैं प्लीज प्लीज सॉन्ग तेरे बिन में यूं कैसे जिया. लगाते हैं जी सबके गाने और हुक्म करें. किशोर भाई कहते हैं अब आपका सवाल यूं है कि अगर हम किसी से पूछें जमीन ऊपर है या आसमान, त हर माण्हू चवंदो आसमान. सुठी ॻाल्हि आहे न, हर कंहिंखे हर चीज़ जी ख़बर हुजणु ज़रूरी आहे. निधिड़ी कहिड़ी टॉपिक दोस्त को, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, दोस्त हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है. क्या बात है भाई. और दर्द दिल आ चुकी है. वालेकुम असलम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है. आप बताएंगे आप कैसी हैं स्वीटी. और हज़ार भाई कहते हैं दोस्ती यो टॉपिक आंसर. क्या बात है भाई, क्या बात है यार, लगता है दोस्ती को ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं. ओके जी, लाली लिसनर हमारे साथ मौजूद. लाली लिसनर आपको भी खुश आमदीद. और उन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम जी पोस्ट खे लाइक एंड शेयर कंदा हलो, ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो, ऐं मूंखे ॿुधायो त वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि, किथे पहुता आहिनि तव्हांजे एरिया में, मिलनि था कोन मिलनि था, लॻायो पिया कोन लॻायो पिया. इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां शेयर कंदा कयो त अला ॾाढा भला आहियो तव्हां. सो शेयर कयो ऐं जल्दी जल्दी डायल कयो 03-15-799-0595-3315-79-5. ओके जी, टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था. हुन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटी थींदो. तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो. मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए.

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: मेरा फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेट पर। हमारे साथ ही यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट लगाने की उम्मीद आपने ऐसा है कि पाली हुई है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भाई बहुत ना ऐसे होते हैं कि हम ये चीज आगे जाकर करेंगे ये चीज, हाँ उनको ये सोचने में जो ना वो जमाने लग जाते हैं। तो ऐसा मत किया करें, अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो अपने आप को इतना तरसाया मत करें, क्योंकि जब आप अपने आप को इतना ज्यादा तरसाएंगे तो जिंदगी जो है ना आपसे रूठ जाते हैं। तो खुद को खुश रखने के लिए जाहिर सी बात है खुद को थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो ना वो रिवॉर्ड्स दिया करें, और उसके साथ साथ जो है ना आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया करें। ओके जी, तो अगर हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि जब आप वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो तो इनमें आप लोगों को प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं और आप लोगों की खूबसूरती किस तरह से बढ़ने वाली है। तो अगर आप, मैं पहले आप लोगों को वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पता है कि जनाब कितने अच्छे अच्छे और कितने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का इसके अंदर जो है ना वो प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, नाइट क्रीम नहीं आपको अच्छी वाली मिल रही है, साबुन लगाना चाहते हैं, फेस वॉश लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह का प्रोडक्ट जो ना वो मिल रहा है। तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग अगर ऐसा है कि परेशान है अपने एक्नी को लेकर, दाने आपके चेहरे पर काफी ज्यादा आ चुके हैं, और गर्मियों का मौसम जब भी आता है ना तो गर्मियों में ये चीज तो है भाई, जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम होता है ना उनके लिए गर्मियां जो ना वो बहुत खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और गर्मियों में तो ये ऐसा है कि भाई जैसे समझ लें कि एक्नी का सीजन भी आ चुका है। तो अगर आपको भी एक्नी प्रॉब्लम है और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा वाला एक्नी का प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को जड़ी बूटियां मिल रही हैं, और आप लोगों को जो है ना ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के चेहरे के जो एक्नी है ना वो खत्म हो जाते हैं, और ना सिर्फ एक्नी खत्म होते हैं बल्कि एक्नी के निशानात खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान हो, कोई बचपन में आपकी स्किन जो है वो थोड़ा कोई जल चुकी थी, या इस तरह का कोई जलने का निशान है, कोई चोट का निशान है, या कोई इस तरह की निशाना जो कि आप भी रिमूव करना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से खत्म हो जाते हैं। वो बिल्कुल आपकी स्किन जो है ना वो क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और ऐसा नहीं कि अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप अकेले कर सकते हैं, या इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ज्यादा ही भाई आप लोगों को एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने के तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है। आप अपना जो है ना फेस वॉश करते हैं। मैं पता क्या बोलने लगी थी। आप अपना सेलफोन उठाएंगे नहीं भाई, आप अपना फेस वॉश करेंगे। और वाइटेश ब्यूटी सोप अगर आप लगाना चाहते हैं तो सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो फेस वॉश लगाएंगे। अपना फेस अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना वो अपने चेहरे पर लगाना स्टार्ट करें, जहां जहां पर निशान आते हैं, जहां जहां एक्नी है, जो जो आपके चेहरे पर मसले उनको रिमूव करना चाहते हैं वहां पर आपने अप्लाई कर देना है, और बस आप सुकून से जो है ना वो सो जाएंगे। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं, और अच्छी वाली बात है कि जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा वाले एक्नी है ना तो वो दिन में भी लगाएं और रात में भी लगाएं। तो बिल्कुल जी, 2 times अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, और उसी के साथ साथ अगर आप वाइटेश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइटेश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, और वाइटेश लवली क्रीम अगर आप लगाएंगे तो भाई मैं यही आप लोगों को बोलूंगी कि वाइटेश लवली क्रीम जैसी कोई फेयरनेस क्रीम आपने अभी तक नहीं इस्तेमाल करी होगी, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर फेयरनेस की क्वालिटीज है बल्कि इसके अंदर आप लोगों को जो है ना ये एडवांस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, और ये विटामिन से भरपूर है जनाब, क्योंकि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से भरपूर है, इसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल है जनाब, और उसके अलावा इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि ये उन लोगों के लिए तो परफेक्ट है जो डेली बेसिस पे कुछ जॉब करते हैं। तो कोई भी अगर आप जॉब करते हैं, आपको सुबह सवेरे जाना पड़ता है, और अगर आप खवातीन हैं आपको मेकअप करना पड़ता है, तो मेकअप से बचने के लिए और गर्मियों के सीजन में खुद को जरा महफूज रखने के लिए आप वाइटेश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप मेकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे घर में सारे अफराद लगा सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है।
بالکل اسے بچے ہو بوڑھے ہو جوان ہو مرد حضرات خواتین ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اپنی خوبصورتی کو بڑھائیے جناب کیونکہ وائٹ ایش لولی کریم آپ کے اسکن کے لیے اور آپ کے استعمال کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی کریم ہے اور وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کرنے والے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے صابن لگانا ہے یا پھر ہم نے فیس واش لگانا ہے تو اس چیز کو اگر آپ تھوڑا دور کرنا چاہتے ہیں کنفیوژن کو تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ وائٹ ایش کا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صابن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل جی ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی صابن لگانا چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو پروٹیکٹ کرے آپ لوگوں کی اسکن کو گلوئنگ بنائے تو آپ وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ استعمال کر سکتے ہیں باقی اگر آپ فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش کا جو فیس واش ہے وہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے اینٹی ایجنگ کے لیے ہے اور اس کے اندر وائٹامن ای بھی موجود ہے وائٹامن سی بھی ہے اور ای بھی ہے سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا زبردست ہے کیونکہ یہ کریمی فیس واش ہے تو آپ اگر فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش کا جو ہے نا وائٹامن سی کا فیس واش آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام وائٹ ایش کے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت سے بھی بہت زیادہ والا خوبصورت بنا دیں گے تو آپ استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے اور ساتھ ساتھ ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595 بڑی 315-79-5595 ہی نمبر آئے ان کے تمام لازمی ڈائل کرو جی تمہاری قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایش جا تمام پروڈکٹس اویلیبل تھی ونجن

जो बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रही है जिसका नाम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। और यहाँ पर फहीम शेख कहते हैं कि टॉपिक दोस्त के सिलेक्ट करना सीन छो जो दोस्त दिल जाए भी ॾींदो आहे पखो भी हणंदो आहे कचहरी भी कंदो आहे अकेलो इंसान आइसक्रीम त खाईंदो पर अकेलो बोर भी थींदो। सही आहे भई। अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुख्य खबर हुई तव्हांखे ही त खबर हूंदी आहे सब। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी सकरन से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं आपको। और शबीर मलिक हमारे साथ हैं, शबीर भाई आपको खुशामदीद करते हैं। निदिनी कहती हैं टॉपिक के चंदा दोस्त मुझे दोस्त चाहिए अली। और चाचा खाले तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम में ॿुधायो वञे थो हिन नंबर ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते या वरी तव्हां उन्हनि खे ऑर्डर कराए सघो था। ठीकु आहे सो अगरि मचकिरिया का त पोइ रहण ॾे, बाक़ी अगरि तव्हां सीरियसली घुराइण चाहियो था त पोइ तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे घुराए सघो था। और निदड़ी कहती अच्छा जी तुम ठंडी हो मेरे साथ बैठ जाओ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। ओके ए मंसारी कहते छो जो आइसक्रीम वारो ई दोस्त आहे खाराईंदो आहे ऑलवेज वाह वाह, यानी कि दोस्त बि कयो अथव त आइसक्रीम वारो। हाँ भाई तरक्की या तरक्की ॿियो छा। ओके जी शजर अब्बास हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम एंड बोला अस्सलाम मदद कहते हैं क्या सिद्रा जी आप कैसी हैं शो इज सुपर हिट। मुसव्विर अब्बास लाशारी फ्रॉम राजी देरो मेरा दोस्त है बासित अली खान लाशारी। ओके जी आप भाइयों को वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया राजी देरो से आप हमें सुन रहे हैं। उनके अलावा प्रेमचंद भाई है वालेकुम अस्सलाम भाई मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। अच्छा छा चओ किशोर भाई जंहिं दोस्त खां धोखो खाधो आहे समुझ हुनखे माण्हुनि जी समुझ कोन आहे। बिल्कुल इहा ई ॻाल्हि आहे, माण्हुनि जी समुझ हुजां त अॻिते न हुजूं आ। और कहते हैं कि तुम मेरे हो ऐसे जिद ऐसी जिद हम कभी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हैं ये हम पूरे हक से कहेंगे। वाह वाह। ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। हजार भाई कहते हैं कि हम आपके साथ साथ हैं शो में, गुड शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह, थैंक यू सो मच हजार भाई। और जी दर्द दिल कहती हैं कि छोड़ो सब वादों को कस्मों को इरादों को तुम आईना देखो और बताओ मेरी पसंद कैसी है सुनो जाना, एहसास की दुनिया में तुम मेरी सबसे खूबसूरत मिल्कियत हो। क्या बात है जी क्या बात है, बहुत बेहतरीन।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप सुन रहे हैं यहाँ पर साथ की आवाज में। एक बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम साथ का गाना भी सुन लेते हैं। और साथ साथ अरे कोशिश तो कीजिए, आज थोड़े सैड गाने फरमाइश मत कीजिएगा।

अच्छा हजार भाई कहते हैं दोस्ती पर शायरी है, जरूर रीड कीजिएगा। दोस्ती वो अनमोल रिश्ता है जो हर मुश्किल में साथ निभाता है, बिन कहे जो दिल की बात समझ ले वही तो सच्चा दोस्त कहलाता है। वाह वाह वाह वाह। और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी प्लीज मास्टर मंजूर। जी जी मास्टर मंजूर का गाना आज लाजमी चलेगा, आप बस अपनी सीट पर बैठे रहिए। और आपने कहा आई डेडिकेट माई बेस्ट फ्रेंड, ओके जी। शौकत अली खोड़ो के नाम, क्या बात है, बायोलैब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ओके जी वेरी नाइस, जबरदस्त सुनकर अच्छा लगा।

हाँ भाई फहीम, आप टेंशन ना करें, लारकाना वालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही इल्जाम लग रहे हैं, तो बस आप थोड़ा इग्नोर कर दें। अच्छा, दर्दे दिल की दोस्त भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया। दोस्त को जरा मशवरा देंगे, वो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए। खूबसूरत आप सारे लोग होते हैं, बस ऐसा सीन बन जाता है कि आपकी खूबसूरती को जरा जरूरत होती है थोड़ी टचअप की। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को निखारते नहीं है, खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते, तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। तो उन मसलों को हल करने के लिए, आपकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए, आप लोगों की स्किन को हमेशा तरोताजा, शादाब और दिलकश बनाने के लिए वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।

अच्छा, मेरा मूड खराब है तो मैं आपका भी कर दूंगी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? वैसे हाँ, ये बात है, अगर इंसान का मूड सही ना हो ना तो वो कुछ भी बोल देगा आगे से, तो सही बात है, डरा करे मुझसे. अच्छा अदील, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए.

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना। और साज जो है ना वो यानी कि बचपन से लेकर ये मेरे फेवरेट है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब से मैं साज के गाने इतने ही पसंद करती हूँ जितने मैं आज करती हूँ। ऐसा है कि मेरी जो पसंद है ना वो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे लोगों की पसंद तब्दील होती रहती है ना, चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। अच्छा नदीड़ी कहती है ये सॉन्ग मैंने अपनी कजन की शादी में प्ले किया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था बट मैंने फुल एंजॉय किया था। ओके और ये इसके बारे में क्या ख्याल है?

अब ये गाना सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा उस मूवी की वाइब दिला रहा है, जिस मूवी में, यानी कि जिस मूवी का नाम ऑब्सेशन है, वो भी ऐसे विश मांगता है तो थोड़ा काम इधर उधर हो जाता है. तो ऐसा है कि मैजिक की बात आजकल जो है ना, वो मर्द समाज में पूरा डर का माहौल है.

शिकारपुर से भूरो भुट्टो हमारा शो जो है वो शौक से सुन रहे हैं, तो उनको भी हम खुशामदीद करते हैं। और एम अंसारी कहते हैं कि मैंने जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाँ भाई, ये थोड़ा डीप हो गया लेकिन बात सच है।

ओके जी, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो बताइए जरा किन किन लोगों ने YGH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करते करते आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, ये हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि भाई जान आप इस्तेमाल कर रहे हैं YGH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये गाना भी मेरा फेवरेट है। आज मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी पसंद के थोड़े से गाने लगाऊं ताकि समझ रहे ना ओके जी, तो इस गाने का नाम इन्ना अप है। इन्ना लिखकर अप लिखेंगे तो ये गाना आपको मिल जाएगा किशोर भाई।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुल्क में लिखे समूह दहशत गर्दन के खत्म कर देंगे।
2: चिकताण में वाद बाद अमेरिका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकरर कर छिया। यूएसएस इब्राहिम ए यूएसएस चार्ज WH बुश के ईरान वेझो मुकरर कयो वयो। सेनेट काम मौजूद अमेरिका जा वीह खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरानी फ़ौज जे दुश्मन जी चुरपुर ते नज़र आहे। फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजे फ़ौज ते फ़ख़्रु आहे।
3: ईरान ऐं अमेरिका विच में ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ दौर स्विट्ज़रलैंड में थियण जो इम्कान। अमरीकी मीडिया मूजिबि पाकिस्तान सऊदी अरब कतर ऐं मिस्री अख़्तियारनि अमरीकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राबता करे छिकताण ख़तम करण ते ॻाल्हि ॿोल कई, जंहिं बाद ॿिन्ही मुल्कनि हिक ॿिए ते हमला बंदि कया आहिनि।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: जोड़ों के दर्द, पट्टों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
5: ये मुअसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: हर चेहरो पंहिंजी अलॻि सुञाणप रखे थो ऐं हर सुञाणप खे घुर्जे ख़ास ख़्याल। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सां गॾु अव्हां जी रोज़ानी स्किन केयर रुटीन जो हिसो। नरमी जो अहसास, ताज़गी जो एतमाद ऐं केयर जेका हर ॾींहुं अव्हां सां गॾु हुजे। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम, खूबसूरतीअ जो एतमाद हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सां गॾु एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप ज़रूरु इस्तेमाल कंदा। शहर जे हर मेडिकल स्टोर ऐं जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे। हेल्पलाइन नंबर 03141705558।
7: अदा छा ॻाल्हि आहे, ॾाढो परेशान पियो लॻी।
8: भाउ छा कयां, 2 सालनि खां अमर पथरियुनि जे मर्ज़ में मुब्तला आहे। डॉक्टर ऑपरेशन
9: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप। ॾेढ 2, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014531456 ऐं तौकीर अहमद 03601623793।
10: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
11: السلام علیکم ادا
12: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
11: ادا نو دکان کھولیو تم چا کجے
12: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
11: نہ ادا
13: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم نہ تھو مو پنجو دکان کھولیو پر تے پر ایڈ بند کران تے دلی نتھی چوی
11: مجھے دکان جی بے ڈرندی
12: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
11: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
13: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
12: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
14: 03013992836
15: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

चाहे तो ये जनाब आपको पता हो कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के चेहरे के डार्क स्पॉट्स हो या फिर आपके चेहरे की डलनेस हो या फिर आपकी स्किन पर जो है ना काफी इस तरह का मसले आ जाते हैं जो कि दूर किए भी नहीं किए होते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपने बहुत से प्रोडक्ट लगा के देखे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, ज्यादातर ऐसा सीन बन जाता है जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है या सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हम क्या करें, हमारे चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आ चुके हैं या फिर ये आपकी आंखों के हल्के बढ़ चुके हैं, रंगत का मसला आ चुका है, तो भाई आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल स्टार्ट करना है। और जब आप लोगों को मैं ये बताती हूँ ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, तो जब वो लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या ये सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, तो आप लोगों को बता दे चलूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ये सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है, इसे सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खास करके वो जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं ना जो थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम प्रोडक्ट जो है वो लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है, और डी स्किन फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बताते चलूं कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये जनाब इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो जल्दी से आप सारे लोग जो है वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये इतना आप लोगों को जो ना अच्छी वाली वाइब देगा, और अच्छा वाला ये एक प्रोडक्ट है जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और इसे आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के लड़कियां और टीनेजर्स हैं एजड हैं सारे लोग इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, इनके लगाने के तरीकेकार भी जरा से आप लोगों को समझा देते हैं। वैसे इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है, रेगुलर जिस तरह आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं या क्रीम लगाते हैं बिल्कुल सेम ही तरीके का है, लेकिन ऐसा सीन है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना उनकी थोड़ी सी एक आदत होती है कि अगर वो फेस वॉश हो या फिर साबुन हो उसका इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं ना, तो वो एक मर्तबा जब आप सुबह को अपना फेस वॉश करते हैं तो आपने साबुन का यूज जो कर रहे होते हैं तो वो 3 से 4 मर्तबा भी आप साबुन लगा लेते हैं, फेस वॉश का यूज कर लेते हैं, बार बार आप जो है ना वो फेस वॉश लगा रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं, और आपने सुबह को फेस वॉश किया, दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, यानी कि सारा दिन बस आपका ये जो ना फेस वॉश करने में निकल जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे, अगर आप इतना ज्यादा फेस वॉश करते हैं ना तो ये चीज भी आपकी स्किन को खराब करने का बाइस बन जाती है। अक्सर कहते हैं ना कि भाई अगर आप साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं तो साफ सफाई भी जो है ना लिमिट में अच्छी लगती है, इतनी ज्यादा अगर आप अपनी स्किन की केयर करने लग जाते हैं ना तब आपकी स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिमिट में अच्छी लगती है। और अगर आप फेस वॉश भी अपना बहुत ज्यादा करते हैं या एक मर्तबा आप अपना फेस वॉश करने जाते हैं सुबह को, जैसे आप फर्ज करें फेस वॉश किया तो उसमें आपने जो है ना वो फेस वॉश का यूज किया तो 4 से 5 मर्तबा लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं बार, तो ये भी आप थोड़ा अवॉइड किया करें, 1 से 2 मर्तबा आपका जो फेस है ना वो क्लीन हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 मर्तबा जो है ना वो साबुन का या फेस वॉश का यूज किया करें, 3 से 4 मर्तबा 5 मर्तबा लगातार आप फेस वॉश मत किया करें इतना ज्यादा। अगर आप इतना ज्यादा फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन पर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, जब आपके चेहरे पर नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाते हैं तब आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इन चीजों को आप अवॉइड करते हैं, इन चीजों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तब आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा जो ना वो मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी स्किन का ख्याल रखिए और साथ साथ ख्याल भी उतना रखिए जब रखना चाहिए जितना, ऐसा नहीं है कि भाई आपने लगातार बस फेस वॉश करते रहना है, आप ये सोचे कि हम तो अपने आप को क्लीन रख रहे हैं, इस तरह का क्लीन भी नहीं रखना चाहिए क्या कि स्किन जो है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाए उसके ऊपर। तो अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि डी स्किन फेस वॉश जो है वो सुबह को इस्तेमाल कीजिए, दोपहर को और रात के टाइम, क्योंकि रात का जो फेस वॉश होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में भी थोड़ा सा आपका फेस वॉश स्किप हो जाता है तो रात का फेस वॉश कभी भी स्किप मत किया करें, वो जरूरी किया करें, क्योंकि रात अगर आप फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो जो पूरी रात होती है ना आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा डस्ट होता है, पोल्यूशन होती है, गंदगी जो जमा हो जाती है पूरे दिन भर की, तो वो रह जाती है, और जब रह जाती है तो सारी रात आपके चेहरे पर जब आप सोते हैं तो आपके चेहरे पर जो ना एक्नी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, निशानात पड़ जाते हैं और ऐसे निशान बन जाते हैं जो भाई कभी नहीं जाते। तो अगर आप भी इस तरह का कोई सीन नहीं चाहते तो रात को अपना फेस वॉश लाजमी करके सोएं और डी स्किन फेस वॉश लगाएं, या फिर आपने जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करना है तो फेस वॉश करने के बाद ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये तरीकेकार अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं
आप डायल करते रहिए 03157990595 ओडी 315 79 90 595 ही नंबर है जो तुम आसानी के लिए अगर पाँच करीबी जनरल स्टोर्स से वनो था तो उतं वही आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश परचेज कर सोता ठीक है सो जना प्रोग्राम है वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए

जी व्हाइटिश एंड रेस किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम कहा जाता है और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए 888-1 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं काइंडली कोशिश किया करें कि आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं। इरम कहती हैं आई लव यू सो मच मेरी दिलबर दोस्त, माँ घोर थियाँ। अच्छा तो मैं गाने जी फरमाइश किया और मैं कोशिश करूंगी आपका गाना लगाएंगे। और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं बहन सिद्रा मुस्कान खुश आमदीद एंड भलीकार। प्यारे भाई आपको भी खुश आमदीद एंड भलीकार कहते हैं। क्या हाल चाल यहाँ के, ठीक ठाक है। दादू का हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर का लगाइएगा। मास्टर मंजूर का गाना आप लाजमी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ।

ओके जी, मेरे पास खास है अब्दुल्ला बहर हमारे साथ हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, सॉन्ग सुनाइएगा। हो मेरा चन्ना का वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शबानी है, वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक असा अगले ते डिपेंड करे वही अखियूं टिमकाईंदासीं त आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक, कुझु त थधो पीआरे ऐं कुझु न पीआरे त पोइ छा कंदा।

फहद देरी हैं, सऊद देरी हैं, फ्रॉम नवाब शाह सलाम अदेश शो तुम्हारा नाइस है, प्लीज प्ले मेरा चना हो, मेरा चना जो गानों हलाने की कोशिश कयूं था। और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अज भी गाने की फरमाइश आए, बिल्कुल तुम्हारा गानों हलाइंदी, और कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट लिंक तुम फेसबुक से शेयर कई, चलो मैं ऐसी बैठा थी। अच्छा इरम कहती दिल भर आप ही जवाब है, मैं तो आपको ही सिलेक्ट करूंगी यार, आज मैं भी उदास हूँ, बस अल्लाह पाक हम दोनों की उदासी दूर करे, आमीन आमीन आमीन। वरियाम अली कहते हैं सिद्रा हम भी शो सुन रहे हैं, आपका प्यारा शो, थैंक यू वरियाम। रसूलाबाद से आब्दुल सिंह शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम अदी, ये क्या अच्छा सच में, चलिए अच्छी बात है, एंजॉय करें। यासीन गुडाड़ो हमारे साथ सकरण से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, असं ठीक आयो, उम्मीद आए तमाम भी खुश होंगे। और कहते टॉपिक असान दोस्त के चूज कंदासूं, सिद्रा आज रऊफ मक्सी जो कलाम तो बुधराइंदा, प्लीज डेडिकेट बशीर लगारी, चले मां कोशिश क्या थी भा तवांजी फरमाइश भी हलाइंदा। नदीम अली हैं हमारे साथ गोठ

0: ओके जी नदीम भा तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे ठीकु आहे मां कोशिशि कयां थी तव्हांजी पसंदि जेका उहा हलाईंदासीं प्रोग्राम में और सोनी की धीअ भी जान में भी आ गई आपके शो में कुछ देर के बाद में चलें जी क्या बात है आपकी लाइफ तो मुझे लगता है बड़ी सेट है यानी घूमना फिरना इधर आना उधर जाना ये करना वो करना क्या बात है भाई चलें एंजॉय करें और बहुत शुक्रिया अच्छा मोहम्मद जमान लिखते हैं अल्लाह आपके दिल से वो सारी थकन उतार दे जो आपने किसी को बताए बगैर बर्दाश्त की हुई है आमीन जी आमीन इंशाल्लाह और दर्दी दिल कहती है देखो
1: कुछ भी नहीं हो मैनू कह दई जेड़ी मेरा सुर मेरी लय मेरी ताले लोकां दी अख च
0: बस देख ही तो रहे हैं अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई हमारे साथ दादू से वालेकुम अस्सलाम नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम करते हैं आदिल भाई आपके बेटे के लिए बहुत ज्यादा वाली दुआएं करेंगे अच्छा किशोर भाई कहते हैं ॾिस न तुझी भाभी खंड ॾियां तोखा खंड ॾियां मैडम खंड ॾियां सभु खतरनाक माण्हू आहिनि वीचारो किशोर भाई फासी वियो आहे सभिनी मैडमनि जे विच में अरे भैया ख़वातीन आजकल बड़ी खतरनाक होती जा रही है सही बात है डरिए

सोनी तो लगेगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का जो इस्तेमाल कर रही है. अब अगर आप भी सोने लगना चाहते तो आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश. अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई को. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मैजिकल टच तो व्हाइटिश लवली क्रीम देगी ना. बिल्कुल जी बिल्कुल देगी, आप इस्तेमाल कीजिए. और नियाज भुट्टो हमारा शो सुन रहे हैं शिकारपुर से, नियाज भाई आपको भी वेलकम करते हैं.

सरफराज अली सोलंकी हमारे साथ ही। हाय सरफराज भाई, आपको भी वेलकम करते हैं जी। ओके जी, सो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, पोस्ट को लाइक को शेयर करते जाइए और बताइए आप कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है ना, हम ले रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ जी शू भी आ चुके हैं. जी शू, आपको भी कहते हैं खुश आमदीद एंड वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, यहाँ पर हिदायतुल्लाह अहमदानी भी हमारे साथ मौजूद, कहते हैं वैसे. हाँ सही बात है. अच्छा जी शू, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया. बिलाल अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, खुश आमदीद. मोहम्मद समी है, वालेकुम अस्सलाम. आप ही सदरा, क्या हाल चाल है आपके? मोहम्मद समी मरी बलोच फ्रॉम मेरे खास शो सुपर सी भी ऊपर है आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. ओके जी, उनका अलावा है जी हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो. ओके जी, वफा मुमताज अली खोसो तव्हांजो मोहबतू आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया बाबा. चाचा खाले, तव्हां कॾहिं कॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि करे छॾींदा न पोइ तव्हांजी वेगी भाइटी खे थोरी कावड़ अची वेंदी आहे. तू समझा. अच्छा सनवाला बिरोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. अदी ठीक है, तव्हां ॿुधाए कीअं आहियो? और साजिद अली बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम भा, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल आहियो, सो मोहबतू आहिनि तव्हांजूं. ओके जी, ओके, बहुत प्यारा गाना आप इंजॉय कर रहे हो. साथ साथ हजार भाई कहते हैं अदी आप बहुत शुक्रिया जी, आपने कुल मिलाकर मेरी तारीफ कर दी, आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच. हजार भाई, आप भी वाइटेश का जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हमें बताया करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो इतने सारे लोग हमारे साथ हैं वो दरअसल खूबसूरत क्यों हुए हैं, क्योंकि वो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अच्छा एम अंसारी लिखते हैं कि हम परफेक्ट नहीं होते, हर तरफ एक तरफ हम किसी की बेहतरीन याद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है, कोई हमारी कुर्बत के लिए तरसता है तो कोई हमारे साए से भी दूर रहना चाहता है। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हम किसी के लिए एक मिसाल तो किसी के लिए एक सबक होते हैं। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी जो इनाम हमारे साथ बात शेयर कर दी और वाकई ऐसा ही है। ओगरी सोगर, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मैं जरा सा बता दूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगी और खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आपकी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन भी रखने वाली है, क्योंकि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर विटामिन ई बीड्स है और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जो कि आपके चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों के हल्के आ जाते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लगेगी। जैसे जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो देख रहे होंगे जनाब वीडियो में कि कितनी जो माई है वो अच्छी और गोरी हो गई है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम से, आप भी अच्छे और गोरे हो जाए, समझ रहे हैं? और सिर्फ गोरो रंग न मिलंदो बाबा, तव्हांजा चेहरे जा दाणा खत्म थी वेंदा, निशान खत्म थी वेंदा, तव्हांजी स्किन क्लियर थी वेंदी, बेदाग थी वेंदी, ऐं पोइ गोरी थींदी।

अच्छा हिदायत अल्लाह कहते हैं दी कराची की बिरयानी खाओगी, मैं खा रहा हूँ, खाएं जी खाएं बिरयानी बिरयानी। अच्छा और हमारे साथ हैं जी ये फहीम, कहते हैं कि हमसे रखिएगा तवक्को ना फरिश्तों जैसी, हम तो इंसान हैं औकात पे आ जाते हैं। सही गल है। ओके जी, मोहम्मद समी कहते हैं हम भी आपका शो रोज सुनते हैं, मैं रुखसार मरी का भाई हूँ, आप ही ओके ब्रो, आपको वेलकम करते हैं।

फहीम आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही हुआ था। ओके जी, क्या बात है, क्या बात है। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए मित्रों। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? टॉपिक दोनों चाहिए, सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट लड़कियों को। अरे वाह, गाने तो अच्छे लगा रही हो, सच्ची बताए। वैसे हमारे साथ हमारी ये प्यारी फजीला सिंधी मौजूद है, बहुत शुक्रिया फजीला। ओके जी, और हमारे साथ किशोर भाई कहते हैं अदा मंडे जो भले कजो, भले कजो बाबा मोकल अव एंजॉय भी कजो, ठीक है। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव्हां अगर लाड़काणे अचो या लाड़काणे जे आसपास आयो या वैसे या हिकड़ी ॻाल्हि त कॉमन थी वई आहे त अॼुकल्ह जिते बि तव्हां रहो था उते तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे, ऐं अगरि नाहे अञा अवेलेबल थी त उन लाइ तव्हां थोरो कष्ट कयो त तव्हां अवेलेबल करायो, ऐं तव्हां अवेलेबल कराइण लाइ छा कंदा, तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595 43-15-79-595। हीउ नंबर तव्हां डायल कयो जी तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते, तव्हांजे एरिया में, तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजे शहर में, तव्हांजे पाड़े में, हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वञे, ठीकु आहे। सो अवेलेबल करायो ऐं ख़ूबसूरती खे वधाईंदा रहो। हिदायतुल्ला कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी ऐसी है, घूमना फिरना हमारी, घर से काम और काम से घर, असांजी भी सेम बाबा सेम। अच्छा वफा, मुमताज अली खोसू हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई। बिलाल अली कहते हैं अभी अफवाह कौन फैला रहा है, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। ये चीज मैंने पहली बार सुनी, तो इस अफवाह को जरा हाइड कीजिए, लोगों की नजरों में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे। अच्छा दर्द दिल आप हमारा शो सुन रही हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी कर रही हैं। चलें जी, कल्ला फरमाइश कीजिएगा अगर आज प्रोग्राम बढ़ गया है तो। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है, शायद आपके कुछ कमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं, तो कहते हैं सिडो जी 4 दिन से मेरा गाना आप नहीं लगा रही हैं, क्यों? मैंने भैंस चुराई है क्या तुम्हारी? हिकड़ी गाल तो भैंस तो आए कोन असांखे, बाकी गानो तव्हांजो हलाईंदासीं बाबा, खारी वेंदासीं। अच्छा अब्दुल गफ्फार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारे भाई। अच्छा बिलाल कहते हैं कि सोच समझकर किसी को सजदों में मांगा करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे ही बुलाने के लिए सजदों में रोना पड़ जाए। सही था चो अल्लाह।

वाह वाह वाह, अगर एक दफो कहेंगे तां दिल डई सडी त पो बाबा वापसी जो जेको रस्तो आ ना वो बंद थी वेंदो आ है। और शोनी तमासा सगत मौजूद आए, थैंक यू सो मच, एंजॉय कयो बाबा पांजी जिंदगी के। और मुनव्वर मुगल भाई कहते मेरी बेटी गाजिया आपको सिंधड़ी आम गिफ्ट भेजना चाहती है, तो अदी कैसे भेज सकते हैं? नहीं भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप बस मेरे हिस्से के खा लीजिएगा और दुआ करें जज्जा। वैसे आम में थोड़ी खाती भी कम हूँ, तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का। और हमारे साथ हैं जी इमदाद जतोई भाई, इमदाद जतोई और अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई की फातला जतोई, आप हमारा शो सुन रहे हैं, सही भाइयों को वेलकम करते हैं। और जी हैं हैदर दादू खां हैदरी, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर जो बुध रहा है, जो मास्टर मंजूर हले पयो बाबा बुधो। और इमाम डिनो सोलंगी फ्रॉम मटियारी सलामदी, गानो बुध रहा है जो शेनिला गुल जो बिल्कुल भाल आने की कोशिश कंदासी, टाइम बची वो तो। और ये मौजूद सलाम आप अच्छा कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत आंधी आई है, फ्री में मेकअप हो रहा है और सब आ जाओ, 78 मोरी मिर्पो खासे राजा हमीर चंद है किशोर कुमार और हीरा लाल फौजी सवाई लाल प्ले करें जी मुखे कुठई जानी चले। टाइम तो खैर अज खत्म थी चुको आ वरी तां जो गानो बुधी वठना सी, सो एंजॉय कयो बाबा फ्री वारो मेकअप। पर अगर तुम वाकई खूबसूरती हासिल करना चाहता तो तुम्हें डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पवंदव। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने का तुम्हें खूबसूरती वी बाबा चांस सफा वी वेंदव खूबसूरती का। सो खूबसूरती वधने सा गडोगर तुम्हारी स्किन घनी सेंसिटिव है ना, खोड़ मानो जी स्किन सेंसिटिव होंगी है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तुम सेंसिटिव स्किन वाला मानू भी लगाए सो था, छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डॉक्टर की निगरानी के अंदर तैयार थियल है, इनके अंदर कोई भी केमिकल ना ही है, सफा टिप टॉप तरीके से तैयार थी वही है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया उन्हें अगर तुम डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल करो जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है, तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट रखो है, क्लीन रखो है, आई मॉइस्चराइज रखो है। सो खूबसूरती तुम हासिल कदा जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कदा।

ओके जी, हुमैरा चन्ना की गाने की फरमाइशें आ रही थी तो मैंने ये वाला गाना लगा लिया है, एंजॉय कीजिए। और दर्दी दिल के नहीं सुनो चंदा, मैं ये पूछ रही थी कि हाँ जी, कहती है कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि हलवा बनाते वक्त जल जाए तो उसे जलवा कह सकते हैं? बिल्कुल जी कह सकते हैं। और फिर बोले जलवा, ये जलवा। अच्छा हसनैन लिगारी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अच्छा फहीम शेख कहते हैं वाइटिश लवली क्रीम बेस्ट है, क्या बात है जी, बिल्कुल आप इस्तेमाल करते रहिए। आशिक खास के लिए हमारे साथ फ्राम नवाब शाह कहते हैं आज जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, तमाशा सगर मौजूद है सो मोहब्बतों तमाजू। ओके जी हिदायत ला, पता नहीं क्या लिखा है आपने, ये बात मुझे समझ नहीं आई जरा आपकी। और किशोर भाई कहते हैं असा के सिर्फ बाबा डी स्किन वालों जो डॉक्टर है उन पा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई है तरह तहे वणे तो पा भी लगा जी, तां भी सफाई डी स्किन डॉक्टर वांगे सोना थी वो समझो था।

छोकी जी मुलाई मुजाहिद बोजदार तव्हांजा कुझु कॉमेंट उपर हलिया विया सोन जे लाइ माज़रत कयूं था. नूर चांदो के ते वाह क्या सॉन्ग हे दिल्ली जी वधी वई धक धक वणियो हूंदो तव्हांखे अलाए कहिड़े भाजी फरमाइशी सो मूं सटक करे लॻाए छॾियो लिस्ट में. न बाबा तव्हां सिंगार भले न कयो, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, डी स्किन जो फेस वॉश लॻायो ऐं साण तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻायो बसि बाबा. सफ़ा ईअं कमु जेको आहे वी आई पी थी वेंदो, सो तव्हां लाज़मी इस्तेमालु करे

अच्छा मोहम्मद समी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। बिलाल कहते हैं कि जेको सा का वधिक प्यारो हुंदो आए अक्सर दर्द तकलीफ उन मां ही मिलंदा आए। बिल्कुल सही था चो। मोहम्मद जमान कहते हैं हम आइसक्रीम भेजेंगे तो रास्ते में पिघल जाएंगे, इसीलिए समझ गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, दुख में भी खिलंदा कयो जी, असा खिलंदा आयो दुख में भी, बस डसिना आयो तो थोड़ो उदास आयो, बाकी बटरी जगह वो निकतल ही हुंदी है। सो हाने सानी वणन जो टाइम भी थियो, बाबा एडो जल्दी टाइम गुजरी वयो। चादा चो केतरो त मथो वणंदी आहे छोकिरी, मथो आहे तॾहिं तरणा थी नी मन मां खबर पई थी त मूंखे मथो आहे, सम्झो था। ओके जी, सो तव्हां सां वरी असांजी मुलाकात थिए पई बाबा 5 बजे वारे प्रोग्राम में, सही आहे। हाओ टाइम ख़तम थी वियो आहे, लियाकत अब्बासी भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। ओके सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा आहे जी, स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा रहिजो, ठीकु आहे। किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था बाबा, जंहिंजा मैसेजिस रहिजी विया आहिनि, जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। 5 बजे मिलूं था।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुझे पाक फौज FCA पुलिस खारजन खिलाफ ऑपरेशन जारी रखो है। ताजन कार्रवाई में वधिक नम खारजन के जन्म भेड़ो कयो वियो। खारजन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई भी कयो पई वञन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शोबान ए बेन ऑपरेशंस में 88 दहशतगर्द मारजी वया। गरु वजीर मोहसन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेस के भेटा पेश। मोहसन नकवी चयो तो मुल्क में लिकल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर जेडी वेंस ए परदेही वजीर मार्को रोबियो के ईरान से सफारती राबता ए गालियों जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण की भी धमकी दे छी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमरीकी फौज के मुख्य कत्ल करण की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण जो चई छो है। फौज ईरान से 1000 मेजाइल फायर करने लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोए ते हटनो पवंदो। काब जंग ईरान की हथियार फिटा करण से खत्म नी न हटंदी। अमेरिका मुआदो टोड़ो तो जिम्मेवार पान हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ चया है तो जंग लाए हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्क ही अमेरिका से मोसर गाल करे तो। परदेही वजीर अब्बास राखची है तो अमेरिका के गाल जारी रखने की दरख्वास्त ना कई। अमेरिका से मुआदो गडियल बुनियादन से ही थे तो। अब्बास राखची मौजूदा सूरत हाल से गाल ओमान पहुंतन।

छिकताण में वाद बाद अमरीका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकर कर यूएसएस इब्राहिम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ईरान वेझो मुकर वो सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा वी का जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त कर रहा ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई चया है ईरानी फौज के दुश्मन की चुरपुर से नजर है फौज मुल्की सलामती आवाम के तहफुज के यकीनी बनाए रही है ईरानी कौम के पांजी फौज से फख्र है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबतो बेतरफन लागापन समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल से गालू बिन्हीं अगवाणन अमरीका ईरान विच में हलंदड़ गालन जो भी जायजो वरतो बिन्हीं अगवाणन बहरी रस्तन की हिफाजत आजाद चुरपुर खिते की सिक्योरिटी के हथी डेण वाल कोशिशन से भी जोर भर सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में तकरारों ब जणा कतल प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो एक जणो कतल थी वो एक जख्मी गोठ गहणो कलोड़ो में जमीनी तकरार तां धुरन में झेड़ो थी पो गोलू लगण के नतीजे में रहीम बख्श कलोड़ो मारजी वो एक जख्मी थी पो दरिया खान मरी वेझो भी गोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लगल लाश नौजवान इम्तियाज लाशारी जो गोली लगल लाश गोठ वेझो जमीन त मिलो पुलिस कतल शक हेठ टिन जणन के हिरासत में वठी छो पुछागाछ जारी जैकबाबाद के गोठ वली मोहम्मद बहन में कारा इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल जवाबदार सदाम बहन नौजवान भाइटी रेहाना के कारा इल्जाम हेठ कतल किया वाके बाद जवाबदार फरार थी वो पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वो है संदस गिरफ्तारी ला छापा हया पा वन छहन महीन का तकरारी बनल कराची बार एसोसिएशन जो चूंडू जारी सदारती उम्मीदवार लाए आमिर नवाज वड़ाइच जीएम कोराई असदुल्ला शाह आमो सामो नायब सदर के अहदे से आमिर शहजाद अहमान इरफान कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान नजीर शर में मुकाबलो पेरों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में जरई पानी की खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज टंडो गुलाम हैदर में पानी खोट खिलाफ आबादगार बदीन रोड से धरण हो मुबारकपुर के मूसा अलाहाबाद शाख में भी पानी खोट खिलाफ आबादगार मुजाहरो निंदो में कढ़ण सब डिवीजन के वाहन में पानी खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज किया पानी फराहम करने मुतालबो

0: मीरपुर माथिले में हारण हणण ऐं गाॾीअ खे क्रॉस करण तां पोलीस खे तशदुद जो निशानो बणाईंदड़ वॾेरे ख़िलाफ़ केस दाख़िल। वॾेरे हाजी ख़ान महर मथां सरकारी फिरियाद ते केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस वॾेरे खे गिरफ़्तार करण में नाकाम। गाॾीअ खे हारण ॾियण ऐं क्रॉस करण ते वॾेरे हाजी महर फहद लगारीअ खे तशदुद करे गाॾीअ सां गेलियो हो। वॾेरे हाजी महर जी मेड़ वठी अचण ते पोलीस खेसि माफ़ बि कयो हो। मीरपुर माथिलो जी अदालत पारां नोटिस वठण बाद दादलगारी थाणे ते वॾेरे मथां केस दाख़िल कयो वियो। भोटकीअ में नौजवान ज़ाल समेत मुबैना तौर अगवा, वालदेन जो एहतजाज, बाज़ियाबी जो मुतालबो। ॻोठाणे ग़ुलाम रसूल शेख जो ज़ाल सां गॾु पुट ऐं नुंहं जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। वालदीन मूजिब पुट अली हसन सईदा सां पसंद जी शादी कई हुई। नारीअ जा वारिस नाराज़ हुआ। पुट घरवारीअ खे डॉक्टर ॾांहुं वठी वियो हो। ॿिन्हीअ खे बाज़ियाब करायो वञे। पीपलो में बकरियूं चोरी करे फरार थींदड़ मुबैना चोर गाॾीअ तां किरी फोत। गाॾीअ जो ड्राइवर गिरफ़्तार। बकरियूं चोरी कंदड़ चोरनि जी गाॾीअ खे पलोड़ो स्टाप वटि पुलिस रोकियो। चोर पुलिस खां फरार थियण जी कोशिश कंदे मुबैना तौर गाॾीअ मां किरी फोत थियो। ड्राइवर गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि गाॾीअ तां किरी फोत थियल चोर जी सुञाणप ॻोठ पतड़ियार वासी रसूल बख़्श दल तौर थी आहे। चौपाए माल जी चोरीअ में इस्तेमालु थियल गाॾीअ जो गिरफ़्तार ड्राइवर टंडो बागो वासी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज।

मसाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराब पर, 03003385 69।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, केतिराई गोदाम सील, हज़ारे बोरियूं हथ। बाण सैदाबाद में मुख़्तलिफ़ गोदामनि ते छापा, गैर क़ानूनी तौर ज़खीरो कयल कणक जूं 5,000 बोरियूं हथ कयूं वयूं, 3 गोदाम सील कया विया। खोड़ा में बि कार्रवायूं करे 10 गोदाम सील कया विया। मदेजी में बि कणक जे गोदामनि ते छापा, केतिराई गोदाम ऐं दुकान सील, कणक जो ज़खीरो कयल हज़ारे बोरियूं हथ। शदादकोट ऐं सेठारजा में बि अमलदारनि जा गोदामनि ते छापा, कणक जूं हज़ारे बोरियूं हथ। सांगण में हुर जमात जो सरकारी ज़मीनूं बासरनि खे अलाट करण ख़िलाफ़ एहतजाज, मुज़ाहिरनि जो मक़ामी माण्हुनि खे ज़मीनूं ॾियण जो मुतालबो। हुर जमात जे चयन ख़लीफ़नि जी अॻवानी में हुर जमात देह जीअंदो में एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मौजिबि पीर पागारे सूरतहाल जो नोटिस वरितो आहे। सिंध हुकूमत अलाटमेंट रद्द न कई त एहतजाज कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल

0: दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बलोचिस्तान में फोर्सेस जो ऑपरेशन शोबान जारी, वधीक नव खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन शोबान दौरान मारजी वयल खारजी दहशतगर्दन जो अंग वधी 52 थी वयो। सेक्रेटरी ज़रियन मूजिब पाक फौज, एफसी ए पुलिस जो खारजन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजन कार्रवाई में वधीक नव खारजन के मारियो वयो। खारजन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन दौरान मारजी वयल खारजन जो अंग वधी 88 थी वयो। गरु वजीर मोहसन नकवी पारा ऑपरेशन ते फोर्सेस के भेटा पेश। मोहसन नकवी चो तो मुल्क में लिकल समूरन दहशतगर्दन के खत्म किया वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नायब सदर जे डी वेंस ए परदेही वजीर मार्को रूबियो के ईरान से सफारती राबता ए गाल्हियों जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण की भी अमरीकी सदर चयो आहे त अमरीकी फौज के मुंह के कतल करण की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण जो चई छो आहे। का भी जंग ईरान की हथियार फिटा करण से खत्म न थी पोते न हटंदी। अमरीका मुआदो टोड़ो तो जिम्मेवार पान हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ है तो जंग लाए हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्की अमरीका से मोसल गालू कर सके तो। परदेही वजीर अब्बास राखची जो चवण हो तो अमरीका के गालू जारी रखने की दरख्वास्त ना कई। अमरीका से मुआदो गडियल बुनियादन से ही थी सके तो। चितान में वाद बाद अमरीका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकर कर छया। यूएसएस इब्राहिम ए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ईरान वेझो मुकर किया वो। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा 20 का वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त कर रहा है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान है तो ईरानी फौज की दुश्मन की चुरपुर से नजर है। फौज मुल्की सलामती अवाम की तहफुज के यकीनी बनाए रही है। ईरान अमरीकी हमलन में 17 शहर के शहीद थियण की तस्दीक कर छी। ईरान की सेहत वाली वजारत मूजिब अमरीकी हमलन में शहीद थींदड़न में एक औरत भी शामिल है। 8 जुलाई से अमरीकी हमलन में 115 शहरी जख्मी थे। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर से हमला किया हुआ। सिंध के मुख्तलिफ शहर में तकरारों तो बजना कतल। प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो एक जनो कतल थी एक जख्मी। गोठगणो कलोड़ो में जमीनी तकरार तां धुरन में जेड़ो थी पयो। दरिया खान मरी वेझो भी गोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लगल लाश अथ। इम्तियाज लाशारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस टिन जणन के हिरासत में वठी छो। पुछा गाछा जारी। जैकमाबाद के गोठ वली मोहम्मद बहण में कारा इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल। जवाबदार सदाम बहण नौजवान भाइटी रिहाना के कारा इल्जाम हेठ कतल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वो। पुलिस जा छापा जारी। 6 महीनन का तकरारी बनल कराची बार एसोसिएशन जो चूंडू जारी। सदारती उम्मीदवार लाए आमिर नवाज वड़ा एच जीएम कोराई ए असदुल्ला शाह में चोटी जो मुकाबलो। नायब सदर के अहदे से आमिर शहजाद अवान अरफान कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान ए नजीर शर में मुकाबलो। पेरों भेरों वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में जरई पानी की खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज। टंडो गुलाम हैदर में पानी खोट खिलाफ आबादगार धरण हो। मुबारकपुर के मूसा अलाहाबाद शाख में भी पानी खोट खिलाफ एहतजाज। निंदो में भी आबादगार पारा पानी खोट खिलाफ एहतजाज कयो। पानी फराम करण जो मुतालबो। मीरपुर माथिले में हारण हणण ए गाड़ी के क्रॉस करण तां पोरत के तशद जो निशानो बढ़ाईंदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल। वडेरे हाजी महर मथा सरकारी फिरियाद से केस दाखिल कयो वियो। पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में मुकम्मल तौर से नाकाम बणल। गाड़ी के हारण डेण ए क्रॉस करण से वडेरे हाजी महर फहद लगारी के तशद कर गहलो हो। वडेरे हाजी महर की मेड़ वी अचण से पोरत केस माफ कयो हो। मीरपुर माथिलो की अदालत पारा नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाने से वडेरे मथा केस दाखिल कयो वियो। गोटकी में नौजवान जाल समेत मुबैना तौर अगवा। वालदेन जो एहतजाज बाजियाबी जो मुतालबो। गोठाने गुलाम रसूल शेख जो जाल से गड पुट नूह की बाजियाबी ला एहतजाज। वालदेन मूजिब पुट अली हसन सईदा सा पसंद की शादी कई हुई। नारी जा वारिस नाराज हुआ। पुट घरवारी के डॉक्टर डां वठी वो हो। बिन्हीं के बाजियाब कराए वे। पीपलो में मुबैना तौर गाड़ी तक किरी फौत थे नौजवान के वारसन जो पुलिस से तशद्दुद जो इल्जाम लाश करने का इनकार। फौती नौजवान के वारसन मूजिब गुलाम रसूल दल के चौपायो माल चोरी के इल्जाम हेठ पुलिस तशद्दुद कर मारो है। जेस तई जिम्मेवार एहलकार केस दाखिल न थी लाश न खणंदासीं। पुलिस मूजिब बकरियों चोरी कर फरार थन्दड़ मुबैना चोर गाड़ी तक किरी फौत थो है।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, केतिरा ई गोदाम सील, हज़ारे बोरियूं हथ। बान सैदाबाद में मुख़्तलिफ़ गोदामनि ते छापा, गैर क़ानूनी तौर ज़खीरो कयल कणक जूं 5,000 बोरियूं हथ कयूं वयूं, 3 गोदाम सील कया विया। खोड़ा में बि कार्रवायूं करे 10 गोदाम सील कया विया। मदेजी में बि कणक जे गोदामनि ते छापा, केतिरा ई गोदाम ऐं दुकान सील, कणक जो ज़खीरो कयल हज़ारे बोरियूं हथ। शहदादकोट ऐं सेठारजा में बि अमलदारनि जा गोदामनि ते छापा, कणक जूं हज़ारे बोरियूं हथ। सांगण में हुर जमात जो सरकारी ज़मीनूं बासरनि खे अलाट करण ख़िलाफ़ एहतजाज, मुज़ाहिरनि जो मक़ामी माण्हुनि खे ज़मीनूं ॾियण जो मुतालबो। हुर जमात जे चइनि ख़लीफ़नि जी अॻवानी में हुर जमात देह जीअंदो में एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मौजे पीर पागारे सूरतहाल जो नोटिस वरितो आहे। सिंध हुकूमत अलाटमेंट रद्द न कई त एहतजाज कयो वेंदो। कराचीअ में 6 महीननि दौरान कुते जी चक जा 25,000 खां वधीक केस रिपोर्ट। सिविल अस्पताल कराचीअ में 7,541, जना अस्पताल में 7,175 केस ऐं हिकु समाजी अस्पताल में 10,500 केस रिपोर्ट थिया। रेबीज जे 17 केसनि मां 17 ई मरीज़ फौत थी चुका। बख्शापुर भर सां गुडू फीडर खे लॻल घारो बंदि न थियो। घारे जो पाणी ज़मीनूं ॿोड़ण बाद ॻोठनि तरफ़ वधण लॻो। इलाइक़े वासी सख़्त परेशान, घारो बंदि करण जो मुतालबो। कठे ज़िले में तेज़ हवाउनि सां गॾु मिटीअ जो तूफ़ान, कचनि घरनि जूं छितियूं उॾामी वयूं, मुहाणनि ॿेड़ियूं समुंड किनारे बीहारे छॾियूं, कारवो वार ठुप थी वियो। चीन जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि बरसातुनि बाद आयल ॿोड़ तबाही मचाए छॾी। पाणी जे तेज़ वहिकरनि में केतिरियूं ई गाॾियूं ऐं घर लुढ़ी विया। ऐं यूनान खां जर्मनी वेंदड़ जहाज़ जी उॾाम दौरान दरी भञी पई। दरी भॼण बाद मुसाफ़िर दरीअ मां ॿाहिरि किरंदे किरंदे बची वियो। जहाज़ जी हंगामी लैंडिंग कराई वई। जर्मन मीडिया मूजिबि उॾाम दौरान जहाज़ जी इंजण जो हिकु टुकड़ो निकिरी दरीअ सां टकराइजी वियो हो, जंहिं सबबि वाकियो पेश आयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप 1.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔

0: ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अक्सर तव्हां ॾिठो आहे त अमानत में ख़यानत जेको आहे न अॼुकल्ह थोरो वधी वियो आहे ऐं कीअं वॾी काई शइ अमानत रखाई पई वञे त हू त चए पियो ठीकु आहे यार ही त भलाई थी वई जो मूं वटि अची वई मूंखे यूज़ पई करणी पवे ऐं जंहिं अमानत रखाई आहे पोइ उहो जेको आहे त पियो रिकवर कंदो वधे त इन ते अव्हां सभ खां पहिरियां असांजे जेको आहे त व्यूअर्स खे इहो ॿुधायो त जेको इहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे आहे छा हिन जो लीगल अगरि असां डेफिनेशन ॾिसूं
1: एस पर बाबर अगरि लीगल डेफिनेशन ॾिसंदो जेकी पाकिस्तान पीनल कोड में लिखियलु आहे उहा लिखियलु आहे की वेन अ प्रॉपर्टी इज़ हैंडेड ओवर टू समवन एंड दैट पर्सन इज़ यूज़िंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन पर्पस और ही इज़ अ डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी आर यू यूज़िंग ऑफ द प्रॉपर्टी इलीगली गिविंग लॉस टू समवन एंड गेनिंग इलीगल गेन टू हिमसेल्फ दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना कंहिं माण्हू अमानत में कंहिंखे ॾिनी हुजे अमानत तौरु शइ त हिन जो ख़्यालु रखिजो ऐं उनखे पंहिंजे पर्पस लाइ इस्तेमालु करे छॾे ऐं उनजी ख़यानत करे छॾे ऐं दैट डेफिनेशन इज़ कॉल्ड या दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड criminal breach of trust
0: acha criminal misappropriation and criminal breach of trust in a binet mein cha difference
1: baba these are two different and distinctive concepts misappropriation is a dishonest misappropriation
0: theek hai
1: badniyati sa kahe she ke kai she mili hoje ya kai she dini hoje ya handover thi hoje voluntarily pehro the question na yahi kayo ta what kind of things are being disappropriated ya misappropriated
0: yes
1: I wo kedi she jo ko trust break to the pyo so I will include here the only movable property is being misused by jk sa chona a property that can be shifted from one place to another place that is called movable property
0: all right
1: hete misappropriation movable property jo thindo a movable property kai bhi thi sake thi from cell phone to motorbike anything from promissory note to bank checks theek a agar ta ja secret documents hujan ya private documents hujan unan kha vathi kare kai bhi edi she jke ta ke maanu ke interested kayo कंहिंखे अमानत तौर वॉलेंटरली रखारायो था पिया पर लेटर ऑन ही इज़ यूज़िंग दैट थिंग फॉर हिज़ ओन पर्पस आर मिस यूज़िंग इट और वेदर ही इज़ अ डिस्पोजिंग ऑफ डिस्पोज मतिलबु इहो आहे त या त हुनखे हुनखे ख़र्च थो करे छॾे या ही सेल आउट हिम सो समवेयर एल्स ऐं हुनजो जेको बि गेन थो थिए पाण वटि थो रखे पियो दैट थिंग इज़ कॉल या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में बि वञे थी ऐं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में बि वञे
0: अच्छा तव्हां जीअं चयो मूवेबल प्रॉपर्टी जेकी आहे त उहा जेका अचे पई हाणे इन में डॉक्यूमेंट जीअं मूं शुरूआत में इंट्रो में बि पंहिंजो ॿुधायो त डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट वटि रखाया वेंदा आहिनि अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो ब्रोकर्स वटि ऐं उहे ॾिसंदा आहिनि त बाबा 10-20 रुपया अगरि वधीक मिलनि पिया हुनखे सेल आउट करे छॾंदा आहिनि विदाउट जेको
1: आहे माण्हूअ जी ख़बर ई न
0: हूंदी ख़बर ई न आहे हुनखे चयां मां तुंहिंजो बसि रोज़ी मिले पई तुंहिंजी शइ मूं सेल आउट करे छॾी mistrust na
1: that is a criminal breach of trust kyun hui ne kya ta hun ta ke trust kare din
0: yes
1: aye ta hun je trust ke break kayo a aye wa she akte ta forward kare chadi ya sell out kare par hun ke anja ta inform na kyo to and that man is still in a concept that that thing is available to that person abc je ko bhi ho je so un je un trust ke un trust ji bhankadi ke un trust ke ton ke we call the criminal breach of trust
0: sahi acha section se agar acha achu pya je ko पीसी में आहिनि 404-409 इन जो थोरो ओवरव्यू ॾेई वठो त उन में जेके आहिनि इन खां अलावा जेके आहिनि त ॿिया कहिड़ा अहिड़ा जेके आहिनि ऑफेंसिस आहिनि जेके इन सेक्शन जे तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे अचनि पिया
1: पाकिस्तान पीनल कोड में जेकी इहे कॉन्सेप्ट अचनि था 403 खां वठी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी 403, 404, 405, 406, 407, 408 the property me
0: asa let's suppose assume kayo asa ka she je ka te ke wate je ka te batol amanat rakhra hai for example asa mobile phone ke desi wato theek hai aun asa jo bhai hi mobile phone ta paan wade rakho kala kha baad me ma cha bi ta ka matha pe un jo misuse pe kare chade un ke password bhi teri ek asa desi chade ai un jo misuse ki un ma numbers kadi wate data kadi wate to yo un me ache pe
1: clarify kanum कि अगर प्रॉपर्टी अगर काई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी तो पे उन लाइ टे शयूं किथे टे लिखियल आहिनि किथे चार लिखियल आहिनि. बहरहाल इस पर माए ओपिनियन जेको मां पढ़ियो आहे त हुन में चार शयूं ऐं टे शयूं रुकाए ॾिनी. सभ खां पहिरियों इहा हूंदी आहे त प्रॉपर्टी देट इज़ गिवन बाए समन वॉलंटरली ॾिनल हुजे, वॉलंटरली इंट्रस्टिड हुजे. इंट्रस्टिड जो मतिलबु आहे उनखे असां अमानत तौरु रखंदा
2: आहियूं. ऑलराइट.
1: सेकेंड, डेट पर्सन हैज़ इलीगली यूज़्ड it for its own purpose, whether the contract expressly or impliedly. Impliedly jo expressly implied jo matlab hai ya ta sa verbally unhan ki wa she dini ho ji
2: sahi
1: te rakho paan wat asa ta ke ikre concern time te ikre reasonable time te asa ta ko vati chhadda se
2: ke
1: ya impliedly ho ji. Implied mana actions and conducts jo through jaisa isharatan chano khani chado ya asa isharatan chano asa ke dei chado ya asa isharatan chano inake te rakho, that is implied contract. Trio that mean once again ma repeat to kya that mean has whether he has used it against the law, against the contract, whether he has a dispose of the property. theek hai, agar in tenin zimran mein agar ache to that man has conducted criminal breach of trust, and disappropriation of, dishonestly misappropriation of the property.
2: all right, all right.
1: sir haane chuna tahan je dinal mazal te agar tahan jo dost sa ta unke dini ashe अगर हो नॉर्मली तव्हांजे साम्हूं ई पासवर्ड खोले थो, घर कॉल करे थो, उनखां पोइ कोई भी मैसेज आहे कम्युनिकेट करे थो टूवर्ड्स फैमिली, मदर थी वई, फादर थी वियो, वाइफ थी वई, सिस्टर थी वई, दैट डज़न्ट मैटर. उहा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में साम्हूं ई न करे, बट यू नो दैट के हिन अगरि कॉल कई बि हूंदी घर ई करे. हाणे हाणे हिते छा थियो, डिस्ट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए, मिसट्रस्ट कीअं थो क्रिएट थिए, की अगरि उहो ई फोन खणी करे उहो ई अगरि को एक्सटोर्शन मनी जे लाइ कंहिंखे तव्हांजो फोन यूस करे एक्सटोर्शन मनी जे करे कॉल थो करे त इन ई नंबर ते या थ्रू तव्हांजी या मैसेज थो करे, टैक्स थो करे, त मूंखे इलीगल मनी पुॼायो.
2: ओके,
1: ठीकु आहे न. नाओ ही इज़ अ ब्रेक योर मिसट्रस्ट, छो की हुन तव्हांजे फोन जो ग़लति इस्तेमालु.
2: ऑल राइट. ऐं जो असां हिनखे एग्ज़ाम्पल ॾेई था सघूं, असां जेके मोबाइल वॉलेट्स हूंदा आहिनि, जे एस कैश या ईज़ी पैसा में पैसा हुजनि, होॾे वञी फॉरन ट्रांसफर करे छॾे,
1: तव्हां हुनखे ॾिनो, हुन खां पैसा खणी ट्रांसफर करे छॾिया, दैट इज़ अ मिसट्रस्ट, दैट इज़ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
2: ओके ओके ओके. सो कुझु मैसेजिस आया आहिनि, फीडबैक आयो आहे, असां उहे शामिल कंदासीं. ऑडियंस जा बि सवाल जेके आहिनि इंक्लूड कयूं पिया. हिकिड़ो ई वॉइस नोट आहे, अचो त ॿुधूं पिया.
3: असलामुअलैकुम, मां तव्हांजो वसीम तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो हुउमि, त तव्हांजे टॉपिक सां रिलेटेड मुंहिंजो बि हिकिड़ो सवालु आहे, त अगरि कंहिंसां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वञे त एफ आई आर कीअं दर्ज कई वञे, ऐं उन लाइ कहिड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत जी ज़रूरत पई सघे थी असांखे, थोरो हिन ते असांखे ॿुधाइजो.
2: ठीकु आहे अदा तयब. सर हिननि चयो त अगरि थी वञे थो इहो, पहिरियों त असां अञा थोरो मां चाहियां पियो त तव्हां असांखे एग्ज़ाम्पल्स ॾियो, त जीअं असांजो कॉन्सेप्ट थोरो क्लियर थिए. त इन खां अलावा ॿिया कहिड़ा एग्ज़ाम्पल्स थी सघनि पिया, जीअं असीं हवालो ॾिनोसीं पी पी सी जो, ऐं पी पी सी में जेको आहे त 404 में जीअं लिखियलु आहे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जेको आहे त डिसीड पर्सन, इन जो कीअं थी सघे थो, कंहिंजी विल आहे उन में जेको आहे त का खुर्द बुर्द कई वञे पई, ऐं उन जी जेकी छॾियल प्रॉपर्टी आहे उन ते जेको आहे त अख पई विझी
1: वञे. जी मां वंस अगेन ॿुधायां थो, जीअं असां हिते ज़िक्र कयोसीं, उहा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मिस ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उहा आख़िर प्रॉपर्टी आहे कहिड़ी. वंस अगेन रिपीटिंग दैट थिंग फॉर द ऑडियंस, जेके असांखे ॾिसे थी ऐं जेके असांखे ॿुधे थी, उन्हनि जे लाइ अगरि जो विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे त उन जस्ट फॉर देयर रिपीटेशन, फॉर देयर सेक ऑफ रिपीटेशन मां उहो शइ ॿुधायां थो. मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में सपोज़ अगरि को माण्हू आहे, कंहिंजो सर्वेंट आहे, घर में अकेलो रहे थो, कुराड़ो आहे या को कुकुराड़ी आहे, ओल्ड एज आहिनि, रहनि था पिया, हुनजी फैमिली ॿाहिरि शिफ्ट थियल आहे. हाणे उहो चई थो वञे पंहिंजे सर्वेंट खे या पंहिंजे क्लार्क खे चई थो वञे त मुंहिंजे अकाउंट में हिन टाइम 20 लख रुपया पिया अथव, ऐं जेकी मुंहिंजी गाॾी आहे, अगरि मूंखे कुझु थी वञे त मुंहिंजी गाॾी ऐं मुंहिंजो जेको अमाउंट आहे उहो तव्हां मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स खे शिफ्ट करे छॾिजो.
2: ठीकु आहे.
1: हाणे डिसीज़ पर्सन जे दौरान उहा शइ हुननि खे ख़बर हुई, लेटर ऑन त जॾहिं हुननि इंफॉर्मेशन छा ॾिनी, गाॾी त हुननि हिन वर करे छॾी, हुननि 20 लख जी जॻह ते 5 लख पाण यूस करे छॾिया, ऐं बकाया 15 लख पंज लख खयां न, डेट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है न, औरत गुजारी वही, औरत गुजारे वन का नाव उन अलमारी खोली, अलमारी में एक तोलो ब तोलो जो भी सोन जो खी सी उन बाकाया उन हैंडओवर कर छोड़े वारिसन के फ्रॉम देट दह तोला में अगर उन ब तोला अगर मिसयूज क्यों देट इज कॉल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
2: ओके अच्छा इन में एक बी मुझे जहन में अची वही गाल अक्सर तिठो असन एक्सीडेंट्स घना थन पाया जो एक्सीडेंट थे पी कंडीशन सफा डाउन होती मू मौजूद हूं तो घना डिठा अड़ा केसिस तो उतने वो उनका वॉलेट्स में पैसा भी कड़ी वा या का कीमती शे हों खी वा तो चार्ज
1: क्रिमिनल ब्रीच में ना अच्छा।

0: छे तने 200 एकड़ में 10 एकड़ जी जमीन है वो मुझी भी है
1: yes, yeah,
0: तो डेट जो पॉइंट है जाते हो मिसट्रस्ट क्रिएट तो थे दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सो टू डिफरेंस थिंग्स
1: हां समझियो जी मतलब कहते ट्रस्ट हूं तो जाहिरी गल है तो अमानत भी उनके ही देनी पड़ती है
0: अमानत भी उनके
1: वो ट्रस्ट जो अगर गलत फायदा बचे लगा करे पियो तो वो जो कहते हैं
0: क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमेशा अप्रोप्रिएशन दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स
1: अच्छा शबाज साहब अचूं पिया इन जी पीपीसी सेक्शन 407 में हवालो डिनो वियो आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एंड वेयर हाउस कीपर्स एक्सेट्रा कीअं पिया ॾिसो हिन खे काई शइ कंहिंखे मतिलबु मिले पई कंहिंखे पहुचाइण जे लाइ उन में विच में हू ख़यानत पियो करे या वेयर हाउस कीपर्स थी विया या बिज़नेसमैन थी विया कंहिंखे अगरि पोयां हैंड ओवर करे वञनि पिया पंहिंजो बिज़नेस ऐं उन में हू ख़यानत करे उन जूं शयूं मिस यूज़ करे
0: कोई भी कोरियर सर्विस करो चाहे वो गवर्नमेंट होजे चाहे वो प्राइवेट होजे कोई कोरियर सर्विस के थ्रू तेज कीमती सामान मोकलदा या ऑनलाइन जरिए अगर तुम ऑर्डर था कर तो वो ऑनलाइन के जरिए तेजे घर सामान पुजा अची सपोज तुम मोबाइल ऑर्डर किया मोबाइल ऑर्डर करण के टाइम जैसे तुम इतने पुगो तो मोबाइल तक डबो तो मिलो पर मोबाइल न मिलो वो विच में जो मोबाइल गुम थी
1: वो
0: बेसिकली दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक फनी मैं बुधा फूड सर्विसेस हले थी पई सपोज कोई फूड सर्विस के दौरान कोई ऑर्डर तो करे छे ऑर्डर के दौरान घर तक पुजंदे ऑर्डर गुम तो थी वे ठीक है तो वो जो ऑर्डर जो गुम थे या ऑर्डर के बी कई जगह डिलीवर कर पैसा पूरा वी छन और जो विच में जो मिसअप्रोप्रिएशन थे थी दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: अच्छा खाइण वारी घुराईंदा तो जेको रस्ते में
0: सामान अवेलेबल न हूंदो आहे या उनखे सपोज हाणे हिकड़ी बिरयानी जो पैकेट आहे अगरि हुन में 10 चमचा उणाणी छॾिया त असां हुनखां न पुछंदासीं त छा आहे पर ॾिठो वञे त उहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करे कोरियर सर्विस मां सपोज कोरियर हाणे असां कोरियर सर्विस

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी?

हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس متعلق میرا ایک سوال ہے کہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اور چیٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام لوگ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیں پلیز.
1: ویری گڈ
2: کوسچن. سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا ہے زبیر آپ نے.
1: جی تھینک یو ویری مچ زبیر, اٹس اے ویری گریٹ کوسچن از بینگ آسکڈ بائی یو. چیٹنگ, cheating is a kind of deception, it's kind of concealment of the facts for anything. Agar ye samjho ta thagi karan jeke dhoko de kai ke manu ke yakin jaran dis mana etro induce kare chadan ta jeki ya she ya ya waqai munji ya
2: sahi
1: mukha tu khareed kar jade tu she unji nahi. mistrust jo mata ki yo budhai deception cheating misappropriation jo yu a ta sirf hai sirf once again coming to the same point ke badniyati from the beginning cheating mein jeki dishonesty hai wo shuru hai.
2: okay,
1: he has intention to deceive that person, माना बाद में क्रिएट न थो जो मैंसरी जो एक्सरी जो मैंसरी इंटेंशन जी चाहूँ जो मैंसरी स्टार्टिंग में ही क्रिएटेड ठीक है ना. लेटर ऑन मू तो करे तो एक्सरी तो उनसे गड पर जो मिसअप्रोप्रिएशन में जी थे थी वह मैंसरी तेजे बदनीय थी वह शुरू में ना वह लेटर ऑन क्रिएट थी थे. मुख्य अगर एक मोबाइल तो मिले रोड से मां खणी छो माना आई हैव नॉट फाउंड द रियल ओनर, मुखे ना खबर पर मां उनजी पब्लिकेशन भी कराया तो मां पाड़े में अनाउंसमेंट भी कराया तो मां लोकलिटी में न्यूज भी फैलाए तो छा अगर मुझे सर्किल है मैं उतने व्हाट्सएप से मैसेज भी हलाया तो मां फेसबुक से एक वीडियो भी चाड़े तो छा तो ये मोबाइल कें अगर जो भी रियल ओनर हो अचे मुखा वे ठीक है. हाँ मां लुक आफ्टर कदम केयर कदम पर मोबाइल मुख्य मिलो मुख्य खबर आ मोबाइल बाबर जो but still I'm not giving that thing to the barber. Nathodiyama, I know where is the barber live, what is the location of the barber, in where place, in which place the barber is working, unki service karte hai, but still that thing I'm using for my own purpose, that thing is called misappropriation. intention बाद में क्रिएट होते
2: सही
1: हुआ चीटिंग में. हां चीटिंग में शुरू में ही था जो इंटेंशन ही धोखो देना.
2: ऑल राइट ऑल
1: ठीक है ना. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड मिसअप्रोप्रिएशन.
2: एक और सवाल भी असमट आया हुआ है प्रोग्राम में शामिल क्यों पिया.
3: अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज अफजल निसार. जी मैं तो जो प्रोग्राम बदी रहा आया हूं. असल को नंडो सवाल है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से अगर कोई भी मानु जो सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे तो पयो त ज़ाहिर आहे कानून जे मुताबिक़ उनखे का सज़ा बि ॾिनी वेंदी. थोरे इन बारे में असांखे गाइड कजो त जेको आहे सो उनजी केतिरी सज़ा आहे ऐं असां उनखे कहिड़े तरीक़े सां सज़ा ॾियाराए सघूं था.
1: बहुत कुछ सर सेम तैयब भी सागो कुछ
2: जी सागो वन सेकंड. अच्छा ससा से अफजल के पे एक व्यू वाइज नोट शामिल है क्यों.
4: वालेकुम सर, आई एम मोहम्मद मेदीशा. तां दा प्रोग्राम बुदी रहा से जे त तां दा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से टॉपिक हले पियो उन में एकड़ो मुंडे सवाल होयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सजा छ है यो बुदाए जो थोड़ो.
1: अमानत में सजा के ॾियारी सो बेहतर इहो आहे त सजा ॾियण खां बहितर
2: आहे.
1: ॾिसो न असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस that person या ABC person. अगर कोई माण्हू क्राइम थो करे न तो वो इंडिविजुअल सां क्राइम नथो करे पूरी सोसाइटी सां क्राइम थो करे त दैट इज़ द रीज़न जॾहिं बि असां क्रिमिनल केसिस में लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस ए बी सी माना हिन शख़्स हिकु इंसान सां क्राइम न कयो आहे पूरी रियासत सां क्राइम कयो आहे छोकी रियासत इज़ अ मदर छोकी स्टेट हूंदी आहे मदर हूंदी
2: आहे
1: जो रोल मदर वारो हूंदो आहे की protect to feed and to give shelter to its indigenous jeke maanu an jeke in public a jeke awam a unan ke jo na ye tri shay muhaya kan state jo kam a so ye individual sa crime na hunda puri state
2: sa crime hunda hai so ek caller shamil ta kare baithu dena sa program di conclude kyun pya lagan
5: अगर मां सवाल इहो कंदुमि अॼु में बि तव्हां सां सवाल कयो तकरीबन अधु खां सवाइ अमल थी चुको आहे वरी बि अर्ज़ु कंदासीं
2: जी
5: हा त इहे जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड रोड ते हले थी
2: ठीकु आहे
5: त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ी सां थी करे मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं
1: सुपर हीरो अगर कोई पंहिंजी सुसाइड ॾिसो आसमान मां खिलाई मकलू हर टाइम सुपरमैन त न
2: ईंदो
1: जेके असां इमेजिनरी हिकिड़ी दुनिया ठाही आहे आयरन मैन सुपरमैन मार्वल
2: सीरीज़
1: असां जेके माण्हू हूं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था कयूं था पिया अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट्रिक्ट कयूं था बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं
2: सुपर हीरो
1: तमामु बहितर आहे डू अप्रिशिएट हिम खे हुननि इहो जेको आहे पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले कयो सलूट पेश कंदुमि सलाम पेश कंदुमि हिननि पुलिस वारनि खे जेके हिन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जी कुर्बानी बि ॾियनि था पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था सो मां जीअं अॻुणे चयुमि त सुपर हीरोज मथो न ईंदा आहिनि सुपर हीरोज़ असांजे अंदरि ई
2: हूंदा
1: अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लाइफ खे रिस्क ते खणी हलनि था फॉर मी दे आर आयरन मैन फॉर मी दे आर सुपरमैन फॉर मी दे आर द बैटमैन सो मार्वल ऐं डी सी खे ॾिसणु न खपे असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज़ अवेलेबल आहिनि वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके हिननि जॻहियुनि ते वञी करे ऐं असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन्हनि आसिर्स खां
2: बिल्कुलु शहबाज़ साहब प्रोग्राम जो वक़्तु पुराणी ते पहुतो आहे इलाही शयूं पंहिंजूं रहिजी वियूं आहिनि अञा लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूवर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहो जेका इहा आहे ब्रिच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे इन खां बची सघनि
1: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन
2: ओके
1: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिशि कयो त हुनजा आई विटनेस ज़रूरु हुजनि ठीकु आहे ऐं आख़िर में इहो चवंदुमि त अगरि सपोज क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो उन्हनि जे ख़िलाफ़ु तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे तव्हां वटि वीडियो आहे तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि तव्हां वटि वाट्सअप कॉल्स आहिनि अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखारियो मालिक ई ॾेखारियो इहा शइ तव्हांजी आहे उन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिशि कयो त तव्हां हुनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम वॉल उन हैंड ओवर करने के टाइम कैटेगोरिकली बुधाया तो मां ताके एज अमानत तौर तो दिया काइंडली में खयानत न कंजो
2: अच्छा इन ते सर मु डिठो है मुझे सामू सोसाइटी मेरा मानो है जिनकी अगर अमाउंट मनी वगैरह असा उन की अमानत ले रख रहे हो ना तो हु चिना नहीं अब है असा इन अमाउंट के यूज कंदासी पो आस्ते आस्ते किस्तन में मोटाई दींदासी उनन के द ईओ तो असा चो ना तो हु बाकायदा तौर पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कन पया अमानत में खयानत करे रिया है ए स्पेशली जेको ट्रस्ट करे ता वडे कुछ रख रहे पयो जी
1: दिसो ना ये ता पाणे लफ्ज सवाल जो जवाब भी पान दिनो तो अमानत तौर रखा
2: अमानत तौर
1: हाँ अगर उन रुपयो भी अगर जया कर रुपयो भी अगर मतो इस्तेमाल कर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ही वे
2: सुनो
1: लगो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न सेम प्लेस
2: यू सो अगले प्रोग्राम तीन दींदा इजाजत अल्लाह हाफिज
1: थैंक यू वेरी मच
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बेहतरीन ताली।

बलूचिस्तान में फोर्स जो ऑपरेशन शोपान जारी अजोके डीएमए वधीक 16 दहशतगर्द मारिजी विया 5 जुलाई का पोए।

0: ਕਿਰਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲਾਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਿਡ
1: ਸਰੀਆ ਗਾਰਡਰ ਟੀਅਰ ਏਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਰੀਆ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਯਚੋ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲਾਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601100
2: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: जहान वाही सेहत वाही त सभु कुझु आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु कराची, इस्लामाबाद ऐं नवाबशाह जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोरडी कबीर रोड मेहरापुर में अॼुकल्ह मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जर्मन जेकी जर्मनी मुल्क आहे, जर्मनी जी फ्रेंचाइज़ आहे डॉक्टर साहिब जी, जेकी कराची में बि आहे, हैदराबाद में बि आहे ऐं असांजे मेहरापुर शहर में डॉक्टर साहिब जे तावन सां हिते खोली वई जो डॉक्टर साहिब असुल हितां जी आवाम ते इहा हिकिड़ी स्पेशली महिरबानी कई। अवेयरनेस मैसेजिस ऐं बीमा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण पहुचाइण जे सिलसिले में डॉक्टर साहिब FM रेडियो ते अची करे या हिते 2021 में अची करे जेका क्लिनिक खोल रही हुनजो आगाज़ कयो। छो जो डॉक्टर साहिब जो चवणु आहे का बि बीमारी लाइलाज न आहे, ऐं यकीन ईअं ई आहे, का बि बीमारी लाइलाज न आहे। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे। काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके मुख़्तलिफ़ ऐं वॾनि इस्पतालनि मां, वॾनि हॉस्पिटल्स मां लाइलाज थी करे आया ऐं डॉक्टर साहिब वटि आया, अलाह ताला जे हुकुम सां अलहमदिल्ला उहे शिफ़ायाब थिया ऐं अॼु उहे तमामु घणो ख़ुशि आहिनि ऐं अॼु बि डॉक्टर साहिब खे दुआऊं ॾींदा रहंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन आहिनि, 30 सालनि खां वधीक डॉक्टर साहिब जो तजुर्बो आहे। अव्हांखे अगरि गुर्दे जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, मसाले जी पथरी आहे, पाइल्स आहिनि, गले जा गुदूद आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, अव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत नाहे। उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। केॾो बि पुराणो अव्हांखे जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर आहे, ब्लड प्रेशर आहे, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फालिज, खंघि, TB, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस BC, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चहिरे जो रंगु सांवरो, चहिरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु या जिन औरतुनि जो वज़न नथो वधे या जंहिंजो वज़न वधी वञे थो, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था 0301-2196-851 ते तव्हां कॉल करे सघो था। कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। दोस्तनि खे असीं चवंदा आहियूं त अव्हीं ज़्यादा खां ज़्यादा प्रोग्राम में कॉल्स करे डॉक्टर साहिब खां कंहिं बि बीमारी बाबति मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था, डॉक्टर साहिबु अव्हांखे मालूमात ॾींदो। त सभु खां पहिरियां असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चवंदा। डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
6: डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे,
7: अलाह ताला जा करुणा एहसान आहिनि।
6: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु। कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा ऐं पंहिंजा ॾींहं जेके तव्हां हिते वेहंदा आहियो उहे बि ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा, जीअं असांजा मौज़ ॿुधंदड़ जेको आहे सो माना आसानी सां सम्झी
4: सघनि। रहीम सलाहु वसलम, पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन पाक जूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असां प्रोग्राम सची ॻाल्हि बर वक़्तनि टाइम ते रोज़ाना नशर थींदो आहे ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त हर उहा ॼाण जेके असांजा घर वेठे मौज़ीन लिसनर्स आहिनि या दोस्त आहिनि या पेशंट हज़रात आहिनि ॿुधंदा आहिनि त उन्हनि ताईं पहुचाए सघूं। जीअं लास्ट टाइम जेको आहे सो हिकिड़े ग़िज़ा जे हवाले सां प्रोग्राम कयोसीं, उन्हनि खे तमामु घणो सभिनी साराहियो ऐं मैसेजिस में बि इहे ई जेको आहे सो रिक्वेस्ट कई त आईंदा बि असांखे कुझु अहिड़े ई जेको आहे सो ग़िज़ाउनि जे बारे में जेकी ॼाण जेकी असां बीमारियुनि जे हवाले सां जेके जेके टोटका हूंदा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां या जेको देसी ॾसनि जे हवाले सां उहे बि इहे प्रोग्राम असांजो मशहूरु हूंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक इन हवाले सां जेकी हर मर्ज़ जे हवाले सां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मशहूरु आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ अमराज़ अव्हांखे ख़बर आहे त नक कन गले जो गदूद वधी वेंदो आहे या जेको आहे सो किडनी स्टोन हूंदो आहे या पिते जी पथरी या जेको आहे सो मैदे जी तेज़ाबियत या मैदे जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या जोड़नि जो सूरु या कुनरग जी जेको आहे सो सूरु हूंदो आहे, कुनरग जी जेकी तकलीफ़ हूंदी आहे उन हवाले सां या गर्दन जा जेके मोहरा जेको आहे सो यानी कमु न कंदा आहिनि या जेको आहे सो कमर दर्द हूंदो आहे या ज़नाना मर्दाना मसाला हूंदा आहिनि, यूटीआई इन्फेक्शन हूंदो आहे, बवासीर जो मसइलो हूंदो आहे, त इन हवाले सां असां वटि होम्योपैथिक जी ट्रीटमेंट कई वेंदी आहे। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में साम्हूं वधण पोट आहे पेट्रोल पंप कोचड़ी रोड ते। सुबुह जो टाइमिंग 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं अहिड़े तरीक़े सां हफ़्ते जा 6 ॾींहं जुमो छंछर आचर सूमर अरबा खमीस मौजूदु हूंदा आहियूं। अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजो चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे, जेको जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं हूंदो आहे। बाक़ी दवाऊं अव्हांखे वठणियूं हूंदियूं आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त सो कहिड़े बि मर्ज़ में जेको आहे सो हिक त इलाजु कराइणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। हीअ जेके अव्हांखे असां 10-15 ॾींदा आहियूं इहे बिल्कुलु जेको आहे तमामु बहितरीन आहिनि एज़ अ फस्ट एड तौर ते या जेको आहे सो फ़िलहालु जेको वक़्ती तौर ते अव्हांखे बिल्कुलु हेल्प कंदा आहिनि। ऐं हूअं बि इहे क़ुदिरती शयूं जेको आहे सो असांखे खाइणु घुरिजनि, छो जो क़ुदिरती शयुनि सां जेको उन्हनि में को बि केमिकल वग़ैरह इन्हनि खे माण्हू न ठाहींदा आहिनि, अलाह ताला तख़लीक़ कयो आहे। ऐं जेके ॿी क़िस्म जूं अहिड़ियूं केमिकल्स वारी दवाऊं हूंदियूं आहिनि उन्हनि में केमिकल्स हूंदो आहे। इन जे करे कोशिशि कंदा कयो त क़ुदिरती शयूं जेके ऐं हिन मौसम में जेकी हर मौसम में अलॻि अलॻि फ्रूट ईंदो आहे ऐं हर जेको आहे सो फ्रूट जो हर भाॼीअ जो अलॻि अलॻि जेको आहे सो फ़ाइदो हूंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां जीअं अॼुकल्ह गर्मी आहे ऐं गर्मी में जीअं मां लास्ट टाइम तव्हांखे खोड़ सारी शयुनि जे बारे में ॿुधायो, फार्मन वग़ैरह जे बारे में, अहिड़े तरीक़े सां हींअर बि अव्हां वटि ॾिसो खीरो वंगो जेको आहे सो तमामु घणो जेको आहे सो वाफर मिक़दार में मौजूदु आहे। खीरो वंगो तमामु हिकिड़ो बहितरीन, छो जो इन इहो सिर्फ़ु हिकिड़ी जेको आहे सो जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त जेके बि तव्हां ॾिसंदव त जेके ब्यूटिशनस हूंदा आहिनि या जेके ब्यूटी पार्लर्स में जेके फेशियल वग़ैरह हूंदा आहिनि, जेके असांजो अदड़ियूं वग़ैरह इहे ॿुधनि थियूं, ॾिसनि थियूं, त उन्हनि खे ज़रूरु ख़बर हूंदियूं त उन्हनि शयुनि में कुकम्बर, जंहिंखे असां खीरो चवंदा आहियूं, कुकम्बर जेको आहे सो फ्लेवर मौजूदु हूंदो आहे, उहो चमड़ीअ जे लाइ जेको आहे सो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। जेके बि अखियुनि जे हेठां हल्का थी वेंदा आहिनि या चहिरे ते छायूं थी वेंदियूं आहिनि, दाग थी वेंदा आहिनि, इवन मोहिड़ा थी वेंदा आहिनि या चमड़ी में पट थी वेंदी आहे, खुश्की थी वेंदी आहे, त उन जे लाइ जेको आहे सो खीरो वंगो तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। सिर्फ़ु चमड़ी जी बीमारियुनि जे लाइ न, बल्कि उन में 90% जेको आहे सो पाणी पियल हूंदो आहे, 90% पाणी पियल हूंदो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॿिया अज़ा शामिलु हूंदा आहिनि ऐं क़ुदिरती तौर ते विटामिन्स जेके हुन में मैग्नेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम वग़ैरह जेके अव्हांजे जिस्म में जेकी खोट हूंदी आहे पाणीअ जी उहा पूरी कंदी आहे, हॾनि जी कमज़ोरी हूंदी आहे उहा जेको आहे सो ख़तमु थींदी आहे, कोलेस्ट्रोल खे फ़ाइदो ॾींदी आहे, ब्लड प्रेशर जंहिंजो वधियल रहे थो उहे जेकॾहिं खाइनि था उनखे ऐं वाधि में वधि हूअं बि थधो त पंहिंजी जॻह ते आहे, लेकिन हिन में जेके अज़ा आहिनि ऐं हिन में जेकी क़ुदिरती सलाहियत रखियल आहे उहा जेकी असांखे अल्सर न छॾींदी आहे, मैदे जी तेज़ाबियत थी वेंदी आहे, नंढे आर्डर में जेकी सोज़िश थी वेंदी आहे, तकलीफ़ थी वेंदी आहे, उन हवाले सां ई तमामु अक्सीर आहे। जिन जे वात में खुश्की रहंदी हुजे या जिसम में जेको आहे सो यानी खुश्की रहंदी हुजे, आत्मा जिन जे मां स्मेल ईंदी हुजे या जिस्म मां स्मेल ईंदी हुजे इवन उन में बि जेकॾहिं खीरे वंगे जो इस्तेमालु ज़्यादा हूंदो त उहाखे इहा तकलीफ़ कोन थींदी। रोज़ाना घटि में घटि ॿ खीरा वंगा जेको आहे सो इस्तेमालु करणु घुरिजनि ऐं घणा जी खल लाहे जेको आहे सो इस्तेमालु कंदा आहिनि, लेकिन खल सां जेको आहे सो हिनखे खाइजे त जेके खल में बि जेके हिन जे में अज़ा हूंदा आहिनि उन्हनि में मुफ़ीद अज़ा हूंदा आहिनि ऐं उन मां वधीक फ़ाइदो पहुचंदो आहे। जे सो जेके बि बीमारियूं आहिनि हीअ प्रोग्राम बीमारियुनि जे हवाले सां ई हूंदो आहे, इन ई हवाले सां मूंखे ॿुधाईंदो इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो इलाजु होम्योपैथिक दवाउनि रस्ते कयो वेंदो आहे ऐं क़ुदिरती तौर ते जेके हीअ फल फ्रूट सब्ज़ियूं ख़ुदा ताला पैदा कयूं आहिनि असांजे लाइ त उन में बि अलाह ताला इहा ई हिकमत रखी आहे। इन जे करे एज़ अ फस्ट एड तौर ते तव्हां इहे शयूं इस्तेमालु करे सघो था त उन सां जेको आहे यानी चमड़ी जी बीमारी, चमड़ी जी खुश्की, मैदे जी खुश्की, तेज़ाबियत वग़ैरह या इवन गर्मी में जेको आहे कंहिंखे लू लॻी वेंदी आहे या गर्मी जो मथे में इंतिहाई शदीद सूरु पवंदो आहे त उन में बि जेको आहे खीरो वांगुरु इस्तेमालु करण सां काफ़ी फ़ाइदो पवंदो आहे। ऐं पथरीअ जे लाइ बि जेको आहे हूअं बि तव्हांखे ख़बर आहे जेके असांजा गुर्दा हूंदा आहिनि उहे असांजे जिस्म जो एज़ अ फिल्टर यानी धोबी तौरु कमु कंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां खीरो वांगुरु वरी गुर्दनि खे जेको आहे सो सफ़ाई तौर ते धोबी तौरु कमु कंदो आहे। यानी जेकॾहिं अव्हां खीरो वांगुरु खाओ था ऐं अव्हांखे जेकॾहिं पथरी आहे, किचरो आहे या इन्फेक्शन आहे त उनखे हू जेको आहे सो काफ़ी सारो फ़ाइदो ॾींदो आहे। यानी दवा पंहिंजी जॻह ते रही पर जेकी असां देसी ॾसनि में ॾींदा आहियूं त खीरो वांगुरु बि उन्हनि मां जेको आहे सो हिकु आहे। अहिड़े तरीक़े सां हॾनि जी कमज़ोरी या हॾनि में सूरु हूंदो आहे त एक्सटर्नली यूज़ तौर ते तव्हां सिर्फ़ु जेकॾहिं खीरे वांगे खे जेकॾहिं गोॾे में सूरु आहे उन ते जेकॾहिं मलींदो त उन में बि फस्ट एड तौर ते अव्हांखे जेको आहे सो काफ़ी फ़ाइदो मिलंदो आहे। वात में जीअं मां ॻाल्हि कई बदबू आहे या छाला थी वञनि था त उन में बि काफ़ी फ़र्क़ु ॾींदो आहे। एतिरे क़दुरु जो जंहिंजी जेकॾहिं का चमड़ी सड़ी पए थी ऐं उते खीरो वांगुरु जी मसाज कबी आहे त उन में बि काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पइजे। इहे हिकिड़ी कुदरती शयूं हूंदियूं आहिनि, इन्हनि जे जेके फ़वाइद हूंदा आहिनि इन्हनि जा तिबी फ़वाइद हूंदा आहिनि कंहिंखे घटि मालूम हूंदा आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु इहो ई आहे त ॿिए ताईं असां अवेयरनेस पहुचायूं त इहे शयूं अवां ताईं पहुचाइण असांजो जेको आहे सो एम हूंदो आहे। इन जे करे अवां ताईं इहे शइ पहुचासीं त कहिड़े बि क़िस्म जी मैदे जी तकलीफ़ आहे, कब्ज़ आहे या जेका गर्मी जो असरु आहे त उन में जेको आहे खीरो वांगुरु तमामु मुफ़ीद आहे। वॾी महिरबानी
6: ऐं दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु अॼु तमामु घणी ऐं तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु ॼाण ॾिनी त खीरे जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि छो जो जेकी असांजी रोज़मर्रा जी खुराक आहे, फ्रूट आहिनि, फल आहिनि, उन्हनि जो असांजी सिहत ते तमामु गहरो असरु हूंदो आहे। तंहिंजे करे असांखे उन्हनि मां बि फ़ाइदो हासिलु करणु घुरिजे। जीअं हिन वक़्तु तमामु घणी गर्मी आहे, 50-51 सेंटीग्रेड जेको आहे सो गर्मी हली थी वञे पई, इन खां पंहिंजो पाण कीअं बचाइजे। गर्मी जी लुक बि आहे, ॿाहिरि निकिरूं था झोलो आहे, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे माण्हू हलंदे गर्मी में किरी पवंदा आहिनि, बेहोश थी वेंदा आहिनि, रोड ते किरी पवंदा, झंग में किरी पवंदा, किथे भिट ते किरी पवंदा आहिनि। दोस्तनि जूं कालूं बि वठंदासीं, शामिलु कंदा हलंदासीं। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलामु अलैकुम, हलो, कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। असांजो नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं, बज़रिया लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, 0301-2196-851। त असीं उहो ज़िक्र करे रहिया हुआसीं त फ्रूट ऐं फल जेको आहे सो असांजे सिहत जे लाइ तमामु घणा काइराता आहिनि, फ़ाइदेमंद आहिनि। तव्हां कंहिं बि बीमारी में बि डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था, 0301-2196-851। जीअं गर्मी जी तमामु घणी मौसम आहे उन में फारवा जेकॾहिं अव्हां इस्तेमालु करियो था तॾहिं बि गर्मी जे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि, ऐं खीरो इस्तेमालु करियो था जंहिंखे असीं वंगो चवंदा आहियूं सिंधी में, उहो बि जेको आहे तमामु फ़ाइदेमंद आहे। कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, दुआ अलहमदिल्ला, केरु साहिबु ॻाल्हाए साईं? ख़ुश आमदी चऊं था हाफ़िज़ सियाल साहिब खे, छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां? मेरापुर शहर जा आहियो डॉक्टर साहब, मेरापुर शहर में अचे थो अलाह ताला जे हुकुम सां। अॻु में बि अहिड़ा मरीज़ आया आहिनि जिन खे मिसाल तव्हां 6 महीननि जी पर 15 ॾींहंनि जी झटको लॻो, उहे बि न बीह सघनि, पोइ नेठि उहे हली हली डॉक्टर साहब अड़ी वीडियोज भी पी हूँ व्यूज पा हूँ जी अस दिखाई भाई ऐसो ये मरीज आयो अल्लाह तलाको अस एफ एम से भी हल्दा वो पा चुना साई असि नंढड़ी या नंढड़ो हाँ घुमे फिरे तो सही थी वो तो तुम रूबरू दिखारे वो तो बेहतर थो साई और इनशाला इन इलाज मौजूद लागू इलाज कराई तो नंढड़ी घुमंदी ठीक है साई जी साई डॉक्टर साहब
4: जैसे बिल्कुल शिफा दियण जी ज़ात रब ताला जी आहे बाकी इलाज कराइण सुनत आहे इन जे करे एक त नंढड़ो ॿार हूंदो आहे नंढे ॿार जे लाइ असां पहिरियां बि अवां सभिनी खे ख़बर आहे त ॿुधाईंदा आहियूं त रूबरू उनखे ॾेखारियो वञे त केतिरी कंडीशन में जेको आहे सो नंढड़ो मुतासिर आहे उनखे ॾिसी पोइ ई जेको आहे सो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त उनजी दवा थींदी न थींदी केतिरी थींदी ऐं मां पहिरीं ॻाल्हि की त शिफा रब ताला जे हथ में आहे इन जे करे नंढे खे रूबरू ॾेखारे वञे
6: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी महिरा प्रोफेम 94 जो ही आवाज़ असांजे समाज में पहुचे पियो प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेके हर अरबा ख़मीस जो मोचन चराचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि 0301-9196-51 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब खां पुछी सघो था कंहिं बि बीमारी बाबति कॾहिं बि तव्हांखे मायूस न आहे थियणो शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे ऐं डॉक्टर सिर्फ़ु इलाज कंदो आहे अलाह ताला जे हुकुम सां अलाह ताला जे फज़ल सां काफ़ी अहिड़ा मरीज़ जेके सिहतयाब थी विया आहिनि ठीकु थी विया आहिनि डॉक्टर साहिब जे दवाउनि सां ऐं डॉक्टर साहिबु इलाज कंदो आहे अल्लाह ताला उन्हनि खे शिफ़ा ॾींदो आहे 0301-9196-51 गर्मी जो तमामु घणो ज़ोर आहे शिदत आहे तंहिंजे करे अव्हांखे गर्मी खां पंहिंजो पाण बचाइणो आहे छो जो लाइट बि अक्सर करे ग़ाइबु रहे थी असांजे प्यारे पाकिस्तान जो निज़ाम अहिड़ो ई आहे जो लोड शेडिंग तमामु घणी आहे ऐं त तंहिंजे करे पंहिंजो पाण बचा करियो इन जो बहितरु हल इहो आहे त ख़ासि तौर ते मंझंदि जे टाइम 11 खां वठी अव्हां 3 वॻे ताईं 4 वॻे ताईं बिल्कुलु घर खां ॿाहिरि निकिरण खां पासो करियो पखो वग़ैरह उनजो जेको आहे सो हवा जो थोरो पासो वठो थधि जो छांव जो पासो वठो उस खां पंहिंजो पाण बचा करियो ज़ाहिर आहे ई कारोबार आहे दुनिया जो दस्तूर आहे अव्हांखे उथणो आहे वेहणो आहे शहर बि अचिणो आहे वञिणो आहे ॻोठ में बि उथणो आहे वेहणो आहे अचणु वञणु सॼो निज़ाम जेको आहे सो ई हलाइणो आहे पर एहतियात ज़रूरी आहे तंहिंजे करे पंहिंजो ख़्यालु रखो पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु 30 साल तजुर्बो रखंदड़ सीनियर डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जेके सिहत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि जीअं अॻियां हफ़्ते डॉक्टर साहिबु हिकु दफ़ो मौजूदु फारा जेके आहिनि उहा इस्तेमालु कयो उहे तमामु थधा आहिनि उन्हनि जो जूस ठाहे इस्तेमालु करियो खीरे जो जीअं डॉक्टर साहिबु अॼु ॿुधाए पियो त तव्हां खीरे यानी वंगे जो इस्तेमालु करियो उहो बि जेको आहे तमामु घणो थधो आहे उनजो असुलु छा आहे जेको इंसान जे यूज़ करे थो उनजो जेको तासीरु हूंदो आहे उहो तासीरु इंसान जे जिस्म खे त जीअं उनजी स्टेमिना हूंदी त उहा गर्मी जी शिदत खे मुंहुं ॾेई सघंदी इंसान में जॾहिं स्टेमिना मज़बूत हूंदी आहे त उनजी गर्मी जी शिदत खे इंसान मुंहुं ॾींदो आहे फेस कंदी आहे उनजी बॉडी 0301-9196-8501 प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़ अव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ बि वेंदासीं गॾु गॾु रहिजो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94
7: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
8: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जहां में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
9: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम में भलीकार हिन वक़्तु सिलसिलो जारी रखंदासीं कालनि जो, छो जो ब्रेक खां बाद में कालूं वठण जो ई सिलसिलो जारी रहंदो आहे। कालर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं दुआऊं तव्हां भाइरनि जूं दुआऊं तव्हां ॿुधायो। साईं ख़ुशि आहियो, ख़ैरु
1: हा
0: कंहिं महीने खां वठी माना 8 महीना थी विया आहिनि। 10 महीने जी 10 तारीख़ खां वठी प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब वटि आया हुआ अॻिमें? डॉक्टर साहिब वटि आया हुआ अॻिमें कॾहिं? कोन। न न आउं डॉक्टर मंज़ूर साहिब जी ॻाल्हि पियो करियां, उन वटि आया आहियो कोन आया हो? पोइ त तूं परेशान थिए ई न यार, हर भरो वरी ईंदो। 8 महीनो थी वियो सूर जंग में खयूं, तुंहिंजी साईं सम्झ रग इहा सीटी पई हूंदी चवंदे मूंखे, जेको आहे जंग त सफ़ा उहो लॻी पई आहे। सुन, ईअं ई लॻी पई अथई न? भड़कंदी न साईं, ब्लॉक हूंदी भड़कंदी। इन जो इलाज मौजूदु आहे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब वटि। ऐं मालिश कंदो आहे छा? मालिश कंदो आहे? बसि माराए छॾी पंहिंजो पाण खे। डॉक्टर साहिब खां एफ एम तोखे ॿुधावे थो, इन जी मालिश न करईंसि, मालिश न करईंसि। रहंदो सुजंदी, मालिश करे उन टाइम तोखे सुकून ॾींदी हूंदी, पोइ ॾिसंदो हूंदे त 2 कलाकनि खां पोइ 3 खां पोइ वधीक सुजंदी हूंदी, सोज कंदी हूंदी। सोज करे थी पोइ मालिश खां पोइ सोज करे थी न? करे थी त न कर न ॾिस, तूं कंहिं सुठे डॉक्टर सां त राबितो कर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु रोज़ माण्हुनि खे मशवरो ॾिए। किथां थो ॻाल्हाई? को मसलो ई न आहे, सुभाणे ई हलिया अचो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मेरापुर में मौजूदु आहे। 30 साल तजुर्बो अथसि, 30 साल जर्मनी खां पढ़ियल आहे, जर्मनी खां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक आहे, जर्मनी वारनि जी फ्रेंचाइज़ अथसि। शहर में ई आहे मेरापुर में।
1: हा
0: हिते रत बत वारो निज़ाम न आहे, प्रॉपर तरीक़े सां इलाज आहे। अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। डॉक्टर वॾो डॉक्टर आहे, मशहूरु डॉक्टर
1: आहे।
0: ठीकु आहे, बाबा साम्हूं ईंदे त तॾहिं जेको आहे सो ॾिसी करे तुंहिंजो इलाज शुरू कंदो। ईअं न आहे त एतिरा या एतिरा पंहिंजो हकीमनि वारो ठगनि वारो कमु न आहे, फिक्स न आहे। मरीज़ ते डिपेंड आहे त उनजो मसलो साम्हूं ॾिसबो आहे। वधीक डॉक्टर साहिब तोखे ॿुधाए थो, एफ एम ॿुध सॼो कुझु, डॉक्टर साहिबु सॼो तुंहिंजो आवाज़ ॿुधे थो पियो। ठीकु आहे, पाण सां ॻाल्हाईंसि। डॉक्टर साहिब तव्हांखे पाण ॿुधाए थो। डॉक्टर साहिब साईं जेको आहे सो मुखातिबु आहे।

0: मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
2: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जैसे किसी ने कल कर दिया। मैं तो अभी रोका की नहीं, प्लीज अंदर बैठ के गल कर लो, मैं तुझे कॉल नहीं आऊंगी, प्लीज।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

0: राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8373।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

धन्यवाद। रतो देरो कंबट का पोए कराची में चीसी जी मातहत वलिका अस्पताल एचआईवी पखेड़ जो गढ़ बन वही बबाड़ू एचआईवी में मुब्तला जा कॉलू निवासी नव भरियन की निगरी के एचआईवी की तस्दीक संदस बेणियों अगई एचआईवी में वरतल मेट्रोविल वे इलाके में टिन वरियन की निगरी के भी एचआईवी होने की तस्दीक थी। वालिदन जो चवण है धी जो इलाज वलिका अस्पताल में थो तबियत खराब थे टेस्ट कराई एचआईवी पॉजिटिव आई वलिका अस्पताल के 80 बारन में एचआईवी की तस्दीक थी वही चार मासूम बारा एचआईवी से झेड़ीदे जिंदगी विञाए चुका। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में अज वधिक 21 दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारजी वियल खारजी दहशतगर्दन जो अघ वधी 64 थी वियो। सिक्योरिटी जरियन मौजिब पाक फौज एफसी ए पुलिस जो खारजियन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजन कार्रवाई में अज वधिक 21 खारजियन के जहनम भेड़ो कयो वियो। जबलन में लिकियल दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फजाई कार्रवाई क्यों पई वन 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शबान है बेन कार्रवाई में 102 दहशतगर्द मारजी चुका। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन के फोर्सेज के भेटा पेश। मोहसिन नकवी मुल्क में लिखियल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कर विंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नायब सदर जेडी वेंस ए परडेही वजीर मार्को रूबियो की ईरान से सिफारती रबता ए गाल जारी रखने की हिदायत। पान हमले की सूरत में ईरान के धरती त मिसरण की धमकी भी दिनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी फौज के मुख्य कत्ल करने की सूरत में ईरान के धरती त मिसरण जो चई छो है। फौज ईरान से 1000 मिसाइल फायर करने लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तोते हटनो पवन। शहीद रेपर की मौत जो प्लान वठन कौम जो मुतालबो है पूरो थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई है त शहीद अगवाणन ए शहरियन जो प्लान वठन जो अहद कयूं था। वडे वजीर अब्बास अराग़ची है त अमरीका से मुआहदो गडियल बुनियादन ते थी सके तो। अब्बास अराग़ची मौजूदा सूरत हाल ते गालियन लाय उमान पहुतल। चिकतान में वाद बात अमरीका जहाज परतार बबेड़ा ईरान वेझो मुकर कर छया। यूएसएस अब्राहम ए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश के ईरान वेझो मुकर कर सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा 20 का जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त कर रहा है। ईरानी पडे वजारत के तर्जमान इस्माइल बकई है त ईरानी फौज दुश्मन की चुर पुर ते नजर आए। फौज मुल्की सलामती अवाम के तहफ़ के यकीनी बनाए रही है। ईरानी कौम के पैंजी फौज से फख्र है। ईरान अमरीकी हमलन में 17 शहरियन के शहीद थियण की तस्दीक कर छी। ईरान की सेहत वाली वजारत मूजिब अमरीकी हमलन में शहीद थींदड़न में एक औरत भी शामिल है। 8 जुलाई ते अमरीकी हमलन में 115 शहरी जख्मी भी थिया। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरन ते हमला किया हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो सऊदी अरब के परडेही वजीर फैसल बिन फरहान से फोन से राबतो। इतने की सूरत हाल अमरीका ईरान गालियन ए इस्लामाबाद यादाश्त नामे ते गालियों बिन्हीं अगवाड़न अमरीका ईरान की ताजी सूरत हाल से गंठिए जो इजहार करते चिकतान के खात्मे लाए सिफारती कोशिशों जारी रखने के इतफाक कियो। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो मालदीव के परडेही वजीर से भी फोन से राबतो। बेतरफन लागापन ए खत्े की सूरत हाल से गाल बोल कई वही।

कराची बार एसोसिएशन जे चूंडन में आवे नवाज बड़ाच मैदान मारे वरतो आवे नवाज बड़ाच 2068 वोट खणी सदर चूंजी वियो जीएम कोराई 648 वोट खणी सघियो अजीज होरी 893 वोट खणी नायब सदर चूंजी वियो अशद सर 1370 वोट खणी कराची बार एसोसिएशन जो सेक्रेटरी थी वियो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460-0100।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 0242460100।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नजगर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर।

0: ਮਹਿਮਾਨ 0301-380-8347।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: तमाम

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 0307359210।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

अगर कैंप दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराणो हुजे उन लाइ भी राब्तो कंदा उन खां अलावा असां टैप वारी केसेट के भी मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं।

बिकिनी पहन अमन बरकरार रखन ए रियासत की रिट के मजबूत कर लाए एक बे सा वेझे राबते में रहने की हिदायत। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में अज वधीक 21 दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारजी वियल खारजी दहशतगर्दन जो अंग वधीक 64 थी वियो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब पाक फौज एफ सी ए पुलिस जो खारजन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजन कार्रवाई में अज वधीक 21 खारजन के जन्म भीड़ो कयो वियो। जबलन में लिखियल दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई कयूं पई वन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शबान ए बेन कार्रवाई में 102 दहशतगर्द मारजी चुका। घर वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सेज के भेटा पेश। मोहसिन नकवी मुल्क में लिखल समूर दहशतगर्द के खत्म कर।

सिंध में एचआईवी केसेस में खतरनाक हद ताईं वाधारो तो तेरह में गंबट का पोए कराची में सीसी जे मातहत वलीक अस्पताल एचआईवी पखेड़ जो गढ़ बणजी वई वधीक बबाड़ियूं एचआईवी में मुब्तला ज़िया कॉलोनी वासी नव वरियनि जी निगरी खे एचआईवी जी तस्दीक संदसि ॿ मासूम भाइर अॻई एचआईवी में वरितल मेट्रोविल वारे इलाइक़े में टिन वरियनि जी निगरी खे बि एचआईवी हुअण जी तस्दीक थी वालदनि जो चवण आहे त थी जो इलाज वलीका अस्पताल में थियो तबियत ख़राब थियण ते टेस्ट कराई त एचआईवी पॉज़िटिव आई वलीका अस्पताल जे 80 ॿारनि में एचआईवी जी तस्दीक थी वई जब 4 मासूम भाड़ा एचआईवी सां जड़ींदे ज़िंदगी विञाए चुका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे नायब सदर जेडी वेंस ऐं परडेही वज़ीर मार्को रूबियो खे ईरान सां सफ़ारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत करे छॾी पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरती तां मिसारण जी धमकी बि ॾिनी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मूंखे क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरती तां मिसारण जो चई छॾियो आहे फ़ौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाइ तयार आहे तेहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो शहीद रेबर जी मौत जो प्लान वठण कौम जो मुतालबो आहे पूरो थियण घुर्जे ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो आहे त शहीद अॻवाननि ऐं शहरियुनि जो प्लान वठण जो अहद कयूं था परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमरीका सां मुआदो गॾियल बुनियादनि ते थी सघे थो अब्बास इराक़ची मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियुनि लाइ ओमान पहुतल चिकताण में वाद विवाद ते अमरीका जहाज बरदार ॿ ॿेड़ा ईरान वेझो मुक़ररु करे छॾिया यूएसएस अब्राहम ऐं यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश खे ईरान वेझो मुक़ररु कयो वियो सेंटकॉम मूजिबि अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी ॿेड़ा विचो भर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल पकई चयो आहे त ईरानी फ़ौज जे दुश्मन जी चुर पुर ते नज़र आहे फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ खे यकीनी बणाए रही आहे ईरानी क़ौम खे पंहिंजी फ़ौज ते फ़ख़्रु आहे अमरीका मुआदो टोड़ियो त ईरान दिफ़ा लाइ तयार आहे ईरान कॾहिं बि जंग नाहे चाही पर ज़ुल्म आॾो न झुकंदो ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालिफाफ चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान अमरीकी नायब सदर खे ॿुधायो हो त असांखे अमरीका ते एतमाद नाहे तकरार ईरान जे हथियार पिटा करण सां कॾहिं बि ख़तम न थींदो दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क जंग जे ख़ात्मे खे तरजीह ॾींदा आहिनि अमरीका सां असरायतियूं ॻाल्हियूं उहो करे सघे थो जेको जंग लाइ बि तयार हुजे ईरान अमरीकी हमलनि में 17 शहरियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी ईरान जे सिहत वारी वज़ारत मूजिबि अमरीकी हमलनि में शहीद थींदड़नि में कोरत बि शामिल आहे 8 जुलाई ते अमरीकी हमलनि में 115 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि अमरीका बंदरबा समेत ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला कया हुआ नायब वज़ीर आज़म साहिबगार जो सऊदी जे परडेही वज़ीर फैसल बिन फरहान सां फोन ते राब्तो फतेह जी सूरतहाल अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद यादाश्त नामे ते ॻाल्हियूं ॿिन्ही अॻवाननि अमरीका ऐं ईरान जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻणितीअ जो इज़हार कंदे छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो नायब वज़ीर आज़म साहिबगार जो मालदीव जे परडेही वज़ीर सां बि फोन ते राब्तो ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई

0: कराची बार एसोसिएशन जी चूंडन में आमिर नवाज वड़ाच मैदान मारे वरतो। आमिर नवाज वड़ाच 2063 वोट खड़ी सदर चूंजी पो। जीएम कोराई 648 वोट खड़ी सको। अजीज बोरी 896 वोट खड़ी नायब सदर चूंजी पो। अरशद शर 1370 वोट खड़ी कराची बार एसोसिएशन जो सेक्रेटरी थी वो। बख्शापुर भरसा बीएस फीडर के आरडी 140 वटा लगल गारे समय घर बोड़े छड़िया। हजार एकड़ से बीटल फसल भी पानी हेट गोठ लिकाओ पंगवार वटा घारो पवण सबब केतरा ही गोठ हजार एकड़ से।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।